माता दे बहुत सारे मंदिर भी साडे देश दे मौजूद ने, जैसे कि वैष्णो देवी, नैना देवी, काली देवी, सुरस्ती देवी, दुर्गा देवी इत्यादिक अनंत देविया साडे देश दे इस भावना करके उजागर होईया कि मनुख ने मनिया ओ परमात्मा माता है, मां है। तो मां जान के पूजा शुरू हुई, मां जान के प्रतिष्ठा शुरू हुई और मां जान के बंदगी, परकर्मा, इबादत ये सब कुछ अर्चा बंधन चल पे। एक तबके ने इस ढंग नाल परमात्मा नु मने। अगा चलिए सूफी संत जड़े ने परिपूर्ण परमात्मा नाल जो रिश्ता स्थापन करदे ने ओ है महबूब ते महबूबा दा। इस वास्ते सबे मुसलमान सूफी कलाम नु पसंद नहीं करदे। मुतस्बी मुसलमाना ने ते सूफिया नु किसे हद तक कतल भी कीता। औरंगजेब ने सरमद नु कतल कीता। मुल्तान दे मुस्लिम हुक्मरान ने शमस तबरेज दी पुठी खल लवा दित्ती। करीबन करीबन जितने भी सूफी पैदा होए मुतस्बी मुसलमाना दे मार दी शिकार होंदे रहे। जैसे कि सरमद दी कबर असी जामा मस्जिद दे कोल वेखदे आं, इस नु औरंगजेब ने कतल कर दिता सी। ये खुले ख्यालां दा मालिक। सूफी कलाम दे अंदर जो रिश्ता परमात्मा दा मिलदा है ओ है महबूब ते महबूबा दा। किसे थां ओ परमात्मा नु महबूब बनांदे ने, खुद महबूबा बनदे ने। किसे थां परमात्मा नु महबूबा समझदे ने, खुद महबूब बनदे ने। इस रिश्ते दे आले दुआले उन्हां दी बंदगी, उन्हां दी इबादत घूमदी है। थोड़ा जिहा होर अगां चलिए कुछ होर भी संबंध मिलते ने। भगत कबीर जी महाराज ने परिपूर्ण परमात्मा नाल जो संबंध जोड़े है वो है ए कि मैं दास हां तू मालिक है। भगत लोग जिन्ने भी होए ने साडे देश दे च करीबन करीबन वो अपने आप नू दास कहिंदे रहे ने, परमात्मा नू मालिक कहिंदे रहे ने। असी तेरे जर खरीद गुलाम हां। कहो कबीर गुलाम घर का जीवाए पावे मार। जितने भी भगत होए ने सब अपने आप नु गुलाम आखदे रहे ने, दास आखदे रहे ने। तू मालिक है असी तेरे गुलाम। गरज के इना रिश्तियां दे आले दुआले परिपूर्ण परमात्मा दा संबंध चलदा रहे। कुछ ऐसे भी भगत होए जिन्हां ने कह दिता तू राजा है असी तेरी परजा। हे परमात्मा तू राजा है। राजा जान के उसकी पूजा हुई और निःकलंक राजा करके आख्या तू निष्कलंक राजा है, तेरे ते कोई कलंक नहीं। तू राजा है असी तेरी रैयत हां, असी तेरी परजा हां। तो बंदगी करदे ने, इबादत करदे ने इस ढंग नाल जैसे कोई परजा राजा दे अगों सजदा कर रही होवे, बंदगी कर रही होवे। कुछ ऐसे भी महापुरुष होए ने जिन्होंने रिश्ता जोड़िया बई तू गुरु है असी तेरे शिष्य। तू गुरु है, समग्र संसार नु चानना देन वाला है, प्रकाश देन वाला है, असी तेरे शिष्य। तो शिष्य जान के ते उनु गुरु समझ के ए संबंध जोड़िया गया बंदगी द्वारा, प्रस्तिश द्वारा। कुछ ऐसे भी ने जिन्होंने संबंध जोड़िया उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मित्रता दा। तू भाई साडा मित्र है, तू साडा दोस्त है। वख-वख रिश्तियां दे ते समुचे संसार दे च वख-वख मजहब ते संप्रदावां मौजूद ने। जैसे कि मैं अर्ज कर चुके हां कि इस्लाम ते ईसाईयत दा रिश्ता प्यो पुत्र दे रिश्ते ते खड़ा है। सनातन मत दे एक धड़े दा परमात्मा नाल रिश्ता मां ते पुत्र दा रिश्ता है। सूफियां दा रिश्ता महबूब ते महबूबा दा रिश्ता है। और भगतां दा जो बहुत तादाद दे साडे देश दे च पैदा होए दास ते मालिक दा रिश्ता है। तू मालिक है असी तेरे गुलाम हां, असी तेरे दास हां। इन्हां दे चों मीरां भी है जो थां थां ते अपने आप नू दासी कहिंदी है, गुलाम कहिंदी है। तू मालिक है माने चाकर राखो जी। ए गीत मीरां दा बड़ा प्रचलित है।
हे प्रभु मेनू चाकर रख ले, गुलाम रख ले, दास रख ले, तू मालिक है, मालिक है, मैं तेरी चाकर हूं। गरज के समुचा भगती जीवन दास ते मालक दे रिश्ते दे आले दुआले घूमदा है। कुछ ऐसे भी ने जो कहनन तू साडा मित्र है। चीन दा प्रसिद्ध संत लाओत्से वो कहंदा हे ईश्वर जिस धातु तो तू बनया है उसे धातु तो मेरा जन्म है, फर्क सिर्फ ए है तू पहले है अनादि है मैं बाद दे चा, इको ही धातु इको ही अनसोन करके तू मेरा वड्डा भरा है मैं छोटा। तो भ्राता दे रिश्ते दे आले दुआले लाओत्से दी बंदगी घूमदी है, लाओत्से दी इबादत घूमदी है। वख वख संसार दे भगता ने संता ने रिश्ते परिपूर्ण परमात्मा दे नाल वख वख स्थापन कीते ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी दा अध्ययन करिए ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज तो पुछिए कि वो अकाल पुरख थोड़ा की लगदा है, परमात्मा दे नाल तुसी केड़ा रिश्ता स्थापन कीता है। तो बाणी पढ़न तो पता चलता है एक रिश्ता गुरु नानक ने नहीं मनिया बल्कि सारे ही रिश्ते परिपूर्ण परमात्मा दे निरूपण कर दिते ने। उन्हां दा फरमान है तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तांबो के आ काड़ा जी। विज्ञानिक तत्व भी साडे सामने अगर किसे बच्चे दी मां होवे ते प्यो ना होवे ओ एहसासे कमतरी दा शिकार हो जाता है और उसनू जगत यतीम कहण लग पैंदा प्यो ही कोई नहीं मां है। ते जे हुण प्यो होवे ते मां ना होवे ऐसा बच्चा ममता ते प्यार तो वांझा रह जाता है। जीवन दी परवरिश दे च काफी खामियां रह जांदियां ने और इस गल नू हुण मनोविज्ञानियां ने मन लिया है कि जिस बच्चे नू मां दी ममता नहीं मिली वड्डा होके ये कठोर होवेगा ये सख्त दिल दा होवेगा। ये गल वखरी है कि उसके पूर्वले संस्कार कुछ पवित्र होवन ते उसके अंदर कोमलता बनी रहे ये गल वखरी है, वरना मां दी ममता अगर नहीं मिली प्यार अगर नहीं मिलिया तो बच्चे दा हिरदा कठोर हो जाएगा सख्त हो जाएगा। मां दी लोड़ है पिता दी लोड़ है। हुण मां होवे बाप होवे पर भरा ना होवे बड़ी घाट महसूस होंदी है। भरा नूं ते आखदे ने इते बावां है इते साडियां बावां ने। हुण मां बाप ते होवे पर भरा ना होवे तां बहुत वड्डी घाट महसूस होंदी है बहुत वड्डी घाट। भरा होवे मां बाप भी होवन पर दोस्त ना होवे मित्र ना होवे जिन्हों बंदा राज दी गल दस सके, क्योंकि कुछ ऐसे भी राज होंदे ने व्यक्तिगत जो बंदा मां नूं नहीं दस सकदा प्यो नूं नहीं दस सकदा भरा नूं भी नहीं कह सकदा वो सिर्फ मित्र नूं ही कह सकदा है दोस्त नूं कह सकदा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमात्मा नूं दोस्त भी कहंदे ने, क्योंकि जिहड़ी गल मेरे अंदर गुझी है हे अकाल पुरख मैं तेरे अगों प्रगट करनी है इस ढंग नाल जैसे कि एक मित्र मित्र दे अगों करदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च मित्रता दा रिश्ता भी मौजूद है। साहिब कहंदे ने सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंती यार तिस मोहन लाल प्यारे के हौ फिरो खोजंती। साहिब उस परम शक्ति नू यार कहंदे ने तू सखा है साडा तू मित्र है साडा तू यार है साडा असी तैथों कोई गल छुपा के नहीं रखनी और छुपा के रख भी नहीं सकते तेरे अगों सब कुछ प्रगट कर देना है। पर तू निरा यार नहीं तू ते भ्राता भी है जैसे रण में सखा बरात तू साड़ी बावा है। निरी तू साड़ियां बावा ही नहीं रक्षा करने वास्ते बल्कि तू पिता है ते पिता दी सोचनी यही आउंदी है बच्चा अजीम बने तू सानू महान बनाने दी भी सोचदा है। तू निरा पिता नहीं तू मां भी है ममता तैथों डुल डुल के पैंदी है तेरा प्यार समग्र जीवन दे उत्ते बरसदा है तू सारिया नाल प्यार पाउंदा। अगां चलिए साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी महबूब ते महबूबा दे रिश्ते नूं भी झुटलांदी नहीं नजरअंदाज नहीं करदी। गुरु नानक देव जी महाराज ने
ऐसा संबंध भी परमात्मा दे नाल जोड़िया। वडहंस राग दा एक शब्द मैं आप जी दे समक्ष पेट करा। मोरी रुण झुण लाया भैणे सावण आया तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया तेरे दर्शन विटों खनिए मन्या तेरे नाम विटों कुर्बानो जा तू ता मैं मान किया है तुद बिन केहा मेरा मानो चूड़ा भन पलंग से मुंदे सनबाई सनबाहा एते वेश करेंदिये मुंदे सौरा तो अवराहा ना मनियार ना चूड़िया ना से वंगणिया जो शह कंठ न लगिया जलन से बाहड़िया। इस शब्द देच जिस रिश्ते का जिक्र है उते ओही संबंध मेरे पातशाह स्थापन कर रहे ने जो सूफिया ने ईश्वर दे नाल स्थापन कीता। दरअसल मां बाप होवन भरा भी होवे दोस्त भी होवन पति ना होवे पत्नी ना होवे तो एक बहुत वड्डी घाट परिवार देच महसूस होंदी है। ए रिश्ता भी परिपूर्ण परमात्मा दे नाल सतगुरु देव जी महाराज ने जोड़े। फिर गुरबाणी उस परम शक्ति नू गुरु भी कहती है। गुरु गुरु गुरु कर मन मोर गुरु बिना मैं ना ही होर तू गुरु है आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा तू साडा गुरु है असी तेथों प्रेरणा लैण वाले तू समग्र जीवन नू ज्ञान दान देण वाला है सारे जगत नू चानना देण वाला है। जिथे साहेब गुरु नानक देव जी महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस दे नाल गुरु ते शिष्य दा रिश्ता जोड़दे ने उत्थे गुरबाणी उसनू राजा भी कहंदी है। को हर समान नहीं राजा ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। ए परिपूर्ण परमात्मा तेरे समान कोई होर राजा नहीं है तेरे समान कोई होर पिता नहीं है तेरे समान कोई होर मां नहीं है तेरे समान कोई होर मित्र दोस्त नहीं हो सकता तेरे समान कोई होर महान मालिक नहीं हो सकता। सारी जगत दे रिश्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा दे च निरूपण कीते ने। भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है कि जिन्ने साडे संबंध ने इन्हां संबंधां दे विचों ही परमात्मा की झलक वेखनी है। मां दे अंदर दुल रही ममता नूं परमात्मा की दित्ती हुई ममता समझना है पिता दा दित्ता होया प्यार ऐसा समझना है कि परमात्मा ही ए प्यार दे रहा है ईश्वर ही ए प्यार दे रहा है। मां नूं ठुकरा के पिता दा दिल तोड़ के अगर कोई बंदा तीर्थां ते भ्रमण करे दान करे पुन करे भाई साहब भाई गुरदास जी ने इस नूं कोई महानता नहीं दित्ती। आप कहंदे ने मां प्यो पर हर सुने वेद भेद न जाने कथा कहानी मां प्यो पर हर करे तीरथ अठसठ तीरथ घूमण वाणी। मां दा दिल तोड़ के प्यो दी बेदबी करके अगर कोई बंदा कथा सुनने वास्ते जाए भाई साहब कहिंदे कथा दे भेद नू नहीं समझ सकेगा इह ते भुल गया इह जो मां तैनू मिली है इह मां नहीं इह परमात्मा ही मां दे रूप च तैनू मिले है परमात्मा ही ममता लुटा रहा है परमात्मा ही प्यार दे रहा है। अगर परमात्मा ने प्यार देना है ममता करनी है तो किस रूप च करे वह मां दे रूप च कर रहा है। परमात्मा ने हमदर्दी जतानी है तो किस रूप दे जतावे वह पिता दे रूप च जता रहा है वह पिता दे रूप च प्यार दे रहा है। इस वास्ते भाई साहब कह रहे ने कि पिता दा दिल तोड़ के जो तीर्थां ते भ्रमण पिया करता है मां नूं ठोकर मार के जो कथा सुनने की कोशिश पिया करता है भाई साहब कहिंदे रब्बी राज नूं ओह नहीं समझ सकेगा। मां प्यो पर हर करे तीरथ अठसठ तीरथ घूमण वाणी ते हुण ऐसा होवे कि माता दे तन दे कपड़े ना आउण पिता दे पैरां दी जुत्ती ना आवे ते इह बहुत वड्डा दानी बणिया फिरे। भाई साहब कहिंदे ने मां प्यो पर हर करे दान बेईमान अज्ञान पराणी। मां नूं ठुकरा के प्यो दियां जरूरतां नूं ठुकरा के जिहड़ा बहुत वड्डा दानी बनन दी कोशिश कर रहा है भाई साहब कहिंदे ने परले दर्जे दा अज्ञानी पुरुष है और बेईमान बंदा है। कारण कि इन्हां तमाम रिश्तियां दे चों ही ते परमात्मा दा रिश्ता लभना सी ईश्वर दा रिश्ता लभना सी।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਘਰ ਮੰਦਰ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ ਘਰ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਪਿਤਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਤ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖੇ, ਤੇ ਜੋ ਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਆਖੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇਵਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਔਰ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਾਇਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਘਰ ਤੇ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਰਕ ਦੇ ਜਾਣਾ? ਘਰ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ? ਤਮਾਮ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਪੀ ਸੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਨਬੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਰਾਹੀ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੇਖ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੇ ਖੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾ ਵਿਚ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰੂਪ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਹੈਨ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ।

पहला सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोणे खट तुरसी मुख बोलना मारण नाद किए छती अमृत भाव एक जाको नदर करे बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। जिंदगी दा लक्ष्य अगर असी लभीए आम दुनियावी मनुख दा आम संसारिक इंसान दा लक्ष्य की है, मनुख क्यों जी रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दुनियावी मनुख दे लक्ष्य दा इस पावन पवित्र वाक देच बड़ा सुंदर चित्रण कीता है, तस्वीर कशी कीती है। आप फरमान कर देने दुनियावी मनुख संसारिक मनुख आम इंसान आद आदमी खान ले जी रहा है, पीण ले जी रहा है, पहनन ले जी रहा है, मनोरंजन ले जी रहा है, परिवार ले जी रहा है, परिवारिक खुशियां ले जी रहा है और फिर जी रहा है सोण ले नींद। जीवन दा आखिर लक्ष्य की है, इस तो बिना होर कुछ लभना भी नहीं। खाना पीना पहनन जिंदगी दे चों कढ दई है। मनोरंजन दा सारा समान एक पासे कर दई है। परिवारिक खुशियां नू बलाए ताकते रख दई है ते नींद नू भी एक पासे कर दई है। शायद मनुख अज ही खुदकशी कर लवे, आत्महत्या दी सोचे, फिर मैं जीवा ही क्यों, किस लई जीवा। जीवना आम दुनियावी मनुखता बस इसे लई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी जिंदगी देच इना तमाम वस्तुआं दी प्रधानता नहीं सी, ना खान दी, ना पीण दी, ना पहनण दी। परिवारिक कशिश भी नहीं सी, घरों निकले बारह बारह साल दी उदासी। जंगल दे रुखां थले होर मनोरंजन भी की हो सकदा सी, इंज कह लो सारे मनोरंजन नूं बलाए ताकते रखिया। किधरे मरू थल दा पेंडा, किधरे पहाड़ां ते भरमन सुमेर जोगियां कोल, किधरे तनहा बयाबान जंगलां देच रुखां दे थले वासा। जिसनों आम दुनियावी मनुख मनोरंजन कहिंदा है, इह ते गुरु नानक दे नेड़े ही नहीं गए। परिवार खुशियां ते नींद, इस सब कुछ नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बलाए ताक ते रख के दस दिता है। जीवन दा लक्ष्य सिर्फ यही नहीं है, जिंदगी दा मनोरथ सिर्फ यही नहीं है, कुछ और भी है। ये ठीक है कि इस सब कुछ तो बिना भी जीवना बड़ा औखा है, पर इस सब कुछ वास्ते जीवना भी कोई जीवना नहीं, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं। पावन पवित्र श्री राग दा ये वाक, इस दिश चार पहरे ने, चार पदे ने, इंज कह लो चार पख ने। जीवन इना चारा ले ही बतीत हो रहा है। प्रथम खाना है, और खाना दुनियावी मनुख दी सिर्फ शरीरक लोड़ नहीं, मन दी सोच नहीं है, मन दा चिंतन है।

ऐसा कीड़ा पदार्थ है कि मैं नहीं छकदा। तृप्ता जी कहन लगियां, मैं ते मर्दाने तो सुने हैं, कई कई दिन तक बार भोजन नसीब नहीं होता, कई कई दिन बिना खाणियां दे लंघ जांदे ने। और खाना पहल है, खाना अवल है। इतनी गल स्पष्ट है कि चार दिन दा जो भुखा मनुख है उसका मनोरंजन नाल संबंध टूट जाएगा, परिवारक खुशियां नाल संबंध टूट जाएगा। की पहनना है और किस ढंग नाल पहनना है, इसकी चाहत भी मिट जाएगी। हर तरह की चाहत नूं भुख खत्म कर देंदी है। भुख इको ही चाहत रखती है कि सिर्फ भुख मिटे, मेरी पूर्ति होवे। तो ए सब तो प्रथम है, भुखे मनुख लई मनोरंजन बेमैनी है, परिवार खुशियां बेमैनी ने, तरह तरह के वस्त्रां दा पहनना बिल्कुल बेमैनी है। तो खाना पहले है। और ए गल स्पष्ट है कि बहुत सारी दुनिया खाण लई जी रही है, सारे दा सारा पशु उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते पहनना है ही नहीं, उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते परिवारक खुशियां है ही नहीं, सारे पशु खाण लई जी रहे ने। और की है, पशु जगत सिर्फ खाण लई जी रहे, पंछियां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है, चौपाए जानवरां दा जगत सिर्फ खाण लई जी रहे है। अगर उन्हां दी कोई सोचनी है ते कम करदी है तो सिर्फ खाण लई कम करदी है। और सारी भज दौड़ खाने दी तलाश है, रिजक दी तलाश है, खुराक दी तलाश है, और कुछ नहीं। और गजब दी गल है कि पशु खांदियां खांदियां रजदा भी नहीं, खाई जांदा है, खाई जांदा है, क्योंकि होर कोई लक्ष्य ही नहीं कि थोड़ा जिहा लक्ष्य नूं बदले। मनुख दे खाण दे नाल नाल कुछ पहनना भी है, पहनण दे नाल नाल कुछ मनोरंजन भी है, मनोरंजन दे नाल नाल कुछ परिवारक खुशियां भी ने। तो इस तरीके नाल मनुख दी जिंदगी थोड़ी वंडी जांदी है, बिखर जांदी है। पशु कोल सिवाए खाने तो होर कुछ नहीं, तो चूंके खाना ही लक्ष्य है ते खाण तो इलावा होर कुछ है नहीं, इस वास्ते पशु अक्सर अदक खा जांदे ने, ज्यादा खा जांदे ने, बहुत खा जांदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज माता तृप्ता जी नूं समझांदे ने, मां जी मैं तरह तरह दे पकवान रोज खाना, केड़े? तो आप कहंदे ने, सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोणे। मां, जो मैं परमात्मा दा नाम मन लिया और मेरा भरोसा जो उस ईश्वर दे नाम विच जम गया है, बैठ गया है, ए मानो मैं सारी मिठास दा आनंद माण लिया। ऐसा केड़ा मिठा पदार्थ है जिसका रस मैं नहीं माणिया। हकीकत है, एक सच्चाई है, जदों भी कोई मनुख इस मिठास दा आनंद जिंदगी च पहली दफा माणदा है, सब कुछ भिखा हो जाता है। दिखे मन फीका त्यागरी सखिए, नाम महा रस पियो। इस वास्ते परमात्मा दे नाम नूं रस नहीं आख्या, महारस, सारी मिठास जिस दे च है। और ऐसी मिठास जिस नूं किसी भी बैरूनी मिठास नाल तशबीह दे के समझाया भी नहीं जा सकता, प्रगट भी नहीं किया जा सकता। महाराज कहने, जो मैं मन लिया है, मन दिया ही सारी मिठास अंदर प्रवेश कर गई है। कदी बगौर मुताला करिए, कथा दा सुनना, कीर्तन दा सुनना, धर्म मंदरां दे जाना, ध्यान साधना करनी, सारा धर्म कर्म कांड अपनाना, मैं इस वास्ते ही है कि किसी तरीके नाल मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लवे, और ते कोई मतलब ही नहीं है। और जिसदा मन जितना मंदा जाएगा, अध्यात्मक तल ते उतना ही उन्नत होंदा जाएगा, उतना ही महान होंदा जाएगा, उतना ही अग्रसर होंदा जाएगा। तो साहिब कहंदे ने, सब रस मिठे मनिए, सुनिए
ਸਾਲ ਆਉਣੇ ਸਲੂਣਾ ਨਮਕੀਨ ਇਹ ਵੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਲ ਦੇ ਚ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਰਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਰਸ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੂਣ ਆਪਣਾ ਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਲੂਣ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬੇਸਵਾਦ, ਹਰ ਦਾਲ ਬੇਸਵਾਦ, ਹਰ ਪਕਵਾਨ ਬੇਸਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਵ ਰਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਇਹ ਨਮਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੋ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਲੋਣੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ। ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮਨੀਏ ਸੁਣੀਏ ਸਾ ਲਾਉਣੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਖੱਟਾ ਹੈ ਤੁਰਸ਼ੀਨ, ਖੱਟ ਮਿੱਠੜਾ ਹੈ, ਕਰਕਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੱਟ

घोड़े पाखर सोयने साखते बूझण तेरी बाट तरकस तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात वाजा नेजा पतसों परगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नूं बुलंदियां ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट है प्रथम शरीर है फिर मन है फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है लोड़ा दे तल ते जी रहा है पर मनुख लोड़ा दे नाल नाल शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है ते मन दियां अपनियां कुछ कामनावां ने मन दियां अपनियां कुछ इच्छावां ने और इन्हां कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नूं जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा ने जितना पसारा वड्डा हो जांदा है और इस नाल मानसिक तनाव वध जांदा है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते ते शायद कोई कोई रोगी होवे पर मानसिक तल ते ते सतगुरु कहिंदे ने जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तल ते मनुख सावधान होवे सतगुरदेव जी महाराज खान पीण दा संजम दसते ने और साफ कहंदे ने बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे ते बाद विच विकार पैदा करे ओ खाना जो वक्ती तौर ते रस देवे पर बाद विच बेरसी नूं पैदा कर देवे और शरीर नूं रोगी कर देवे सतगुरु उस तों जो है वरजदे ने। इह गल वखरी है कि शरीर अलग अलग ने कोई वाई प्रधान शरीर है कोई कफ प्रधान शरीर है और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक सुभाव नूं वेख के खाणियां प्रति जो सुचेत हो जांदा है वो शरीरक पीड़ा तो बच जांदा है मानसिक विकार तो बच जांदा है और जैसे शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जांदी है। पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे पहनना सिर्फ नुमाइश होवे पहनना अपनी बिरती नूं भी बार मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नूं भी अपनी तरफ खिंचे ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नूं जन्म देंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानूं वरजदे ने बाबा होर पहनण खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था दा जिक्र करदे ने जद तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा है। और एही एक ऐसा शब्द है जिस दे चार रहाव ने चार ठहराव ने ए अपनी तरह दा इंज कह लो एक महान शब्द है जिस दे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार रहाव ने। चार रहावां दे भाव चार भाव सतगुरां ने साडे सामने रखे ने प्रथम शरीर
और शरीर दे खान पीन दा मसला हल होवे तो फिर पहनना, और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप नूं नुमाइश करन दा चाव पैदा होवे ते दूजियां दी बिरकती नूं भड़कान दा मसला खड़ा होवे। साहिब कहिंदे नहीं, इह वी खुआरियां नूं जन्म देंदा। खान पीन पहनन दे मसले तो जैसे मनुख निश्चिंत हुंदा है तो फिर मन दी दुनिया सामने आउंदी है। कहिंदे ने पशु सुखी ने क्योंकि अक्सर प्रकृति उन्हां दीआं शरीरक लोड़ां दी पूर्ति कर देंदी है, पर ए जो मन है मनुख दा ए ऐसा है कि शरीरक लोड़ां दी पूर्ति हो जाए और जितनी ज्यादा हो जाए ए उतने

0: धन गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग दे पावन पवित्र वाक दे चौथे रहाओ दे जो मुख गल साडे सामने रखते ने खान पीन का भी मसला हल हो जाए, पहनण का मसला भी हल हो जाए, सारे मनोरंजन दे साधन भी प्राप्त होन, लेकिन प्राणा विच इक प्यास रह जांदी है परिवार दी। मेरा परिवार भी होवे, मनुख समाजिक प्राणी है, तनहा नहीं रह सकदा, कल्ला नहीं रह सकदा। पशुआं दी कोई समाजिक जिंदगी नहीं है, और पशु अकल्ले तनहा जिंदा रह सकदे ने। और अक्सर देखा गया बेशतर पशु तनहाई दिच रह जांदे ने, और तनहाई उना लई कोई तनहाई नहीं, मन दी दुनिया ही नहीं है, सिर्फ तन दी दुनिया है, लोड़ां दी पूर्ति हो गई, मस्त होके सौ जांदे ने। मनुख मानसिक तल ते जीण वाला है और समाजिक प्राणी है, इसनू परिवार भी चाहिदा है, और परिवार विच मां बाप पत्नी तिया पुत्र भरा मित्र, और इस तरीके नाल तीन प्रणालियां समाजिक रिश्तियां दियां गिणिया गईयां ने, दादकियां दे रिश्ते, नानकियां दे रिश्ते, सौरियां दे रिश्ते। तीन रिश्ते चलदे ने एक पिता तो, एक मां तो, एक पत्नी तो। पत्नी नूं एक पासे कर दईए सौरियां दे कोई रिश्ते नहीं, मां नूं एक पासे कर दईए नानिहाल बचदा ही नहीं, पिता नूं एक पासे कर दईए दादकियां दी प्रणाली चलदी ही नहीं। समाजिक रिश्तियां दियां ए तीन शाखावां ने, दादके नानके सौरे। तो चूंकि मनुख समाजिक प्राणी है, इनू दादकियां दे रिश्ते चाहिदे ने, इनू नानकियां दे रिश्ते चाहिदे ने, इनू सौरियां दे रिश्ते चाहिदे ने। मनुख दे कोल बहुत सारे साजो समान दे माण दे नाल नाल रिश्तियां दे भी माण हुंदा है, रिश्तेदारां दा भी माण हुंदा है, संबंधियां दा भी माण हुंदा है। इह गल वखरी है कि इन्हां रिश्तियां विचों किहड़ा व्यक्ति उस नूं अधिक प्यारा है, ज्यादा प्यारा है, पर फिर भी इन्हां तीन रिश्तियां दी प्रणालियां दी अपनी प्रधानता मनुखी जगत विच बनी आई है और है। नानके दादके सौरे। सिख जगत दे महान दार्शनिक संत भाई साहब भाई गुरदास जी वो कहने हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेरे रिश्ते तो सारे रिश्ते कुर्बान करदा, सदके करदा। बड़े सोहने ढंग नाल उन्होंने एक कवित विच इन्हां रिश्तियां दी गिणती कीती है और अपना मनोवेग अपना मनोभाव प्रदर्शित कीता है। नहीं ददसार पिता पितामह पर पितामह सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है। पिता पिता दा पिता दादा, फिर उसका पिता परदादा, फिर उसका पिता लकड़ दादा। इस तरीके नाल ए दादके घरानिया दे रिश्ते भरा ने पुत्र ने, ए सारे दा सारा दादका कहलांदा है। आप कहने नहीं ददसार पिता पितामा पर पितामा सजन कुटुंब सुत बांधव ना भराता है। नहीं ननसार माता पर माता वृद्ध माता मामी मामू मासी मौसा विविध विख्याता है। नानकियां दे सारे रिश्ते चलदे ने मां तो, मां मां दी मां नानी, फिर उसकी मां प्रणानी, मामे मामिया मासी इत्यादक मासड़ इत्यादक, ये सारे रिश्ते मां करके ने। भाई जी कहंदे ने नहीं ननसार माता पर माता वृद्ध माता मामी मामू मासी मौसा विविध विख्याता है। नहीं ससुरार सास ससुर सारो ओ सारी, नहीं ब्रितीसर जाचक ओ ना दाता है। पत्नी तो जड़े रिश्ते चलते ने, साला है, साली है, सस है, सौरा है, ये सारे पत्नी तो चल देने। मैं फिर अर्ज करा, पिता नु एक पासे करिए, दादकियां दी प्रणाली खत्म, मां नहीं तो नानकियां दा पसारा खत्म, पत्नी एक पासे तो कौन साला कौन साली, कौन सस ते कौन सौरा, ये रिश्तियां दी प्रणाली टूट जांदी है। खड़ी है सौरियां दी प्रणाली पत्नी ते, खड़िया है दादकियां दा संसार पिता ते, नानकियां दी दुनिया मां ते। भाई साहब भाई गुरदास जी चौथी पंक्ति देच अपना मनोभाव इंज प्रदर्शित कर देने, नहीं ससुरार सास सुसर सारो ओ सारी, नहीं ब्रितीसर जाचक ओ न दाता है, असन बसन धन धाम काहू में न देखियो, जैसे गुरसिख साध संगत को नाता है। गुरु दी संगत च बैठ के सुरत नू जड़ा प्रभु नाल जोड़ लेना है, ये जो रिश्ता है, ये जो नाता है, भाई साहब कहते दुनिया च कोई ऐसा नाता नहीं, पर इस दी तह दे च थोड़ा ते जो है जाना पेगा। आखिर ए संबंध परिपूर्ण परमात्मा दे बनाए हुए ने। तिया पूत सब हर के किए, सबना को संबंध कर दिए, फिर मात पिता सुत बंधप भाई, नानक हो आपार ब्रह्म सहाई। यतीन कह देने असी उसनों, जिसने मां नहीं जिस दिए पिता नहीं, यतीम है यतीम है, पति नहीं तो उस पत्नी नु बेवा कह दिता जाता है, और पत्नी नहीं तो उसका पति होना खत्म हो जाता है, इंसान रह जाता है, मनुख रह जाता है, हुण ये पति नहीं है, पत्नी करके ही पति सी। ये रिश्ते एक खास वजूद नु, इस खास अवस्था नू, एक खास मनोवेग नू जन्म दे देना है। और बच्चा ही नहीं ते मां किथे, कदी बगौर मुताला करिए, सिर्फ बच्चे दा जन्म नहीं होया, मां दा भी जन्म होया है, सिर्फ बच्चे दा जन्म नहीं होया, प्यो दा भी जन्म होया है। कहिंदे आ बच्चा पैदा होया, बच्चा पैदा होया है, पर अधूरी गल करदे आ, नहीं कहना चाहिदा है मां दा जन्म होया, मां दा जन्म होया, अधूरी गल करदे आ, लड़का पैदा होया है, लड़का पैदा होया है, पर कह देना चाहिदा है पिता पैदा होया है, पिता पैदा होया है। इत्थे एक दूसरे दे उत्ते सारे रिश्ते खड़े ने, सारे जो है संबंध खड़े ने। आध्यात्मक संबंधा दी खान है गुरु, गुरु नू हटा दईए, ना कोई संत, ना कोई ऋषि, ना कोई मुनि, ना कोई जोगी, ना कोई पीर, ना ही कोई पैगंबर, ना ही कोई अवतार, ना ही कोई भगत, ये सारे रुतबे गुरु तो जन्म देने। एक पत्नी नू हटा दईए, शाखावां सारियां ही खत्म हो जाणगियां। यही एक रिश्ता है पति पत्नी दा, जो दाद के अगां चल के दाद के नानके ते सौरियां नू जन्म देता है। एक रिश्ता नहीं तो मनुखी वैण खत्म हो जांदा है, और मनुखी वैण खत्म हो गया तो किथे दाद के, किथे सौरे, और किथे नानके। तो जिथे अध्यात्मक रिश्तियां दा केंद्र गुरु है, समाजिक रिश्तियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने। इस एक रिश्ते तो तमाम समाजिक रिश्तियां दा जन्म होंदा है, खला पैदा हो जांदा है उस मनुख दी जिंदगी च, चाहे स्त्री है ते चाहे पुरुष है। अगर वो सिर्फ स्त्री रह गई है, पत्नी नहीं, बेवा हो गई है, अगर वो सिर्फ पुरुष रह गया है, पति नहीं, तो उसकी दुनिया दे च, उसके अनुभव दे च फौरन ये गल आ जांदी है, किथे दादके, किथे सौरे, किथे नानके, सब रिश्तियां दराड़ पै जांदी है। और ये दराड़ा कई दफा ओदी अखां दे सामने इतनियां ही वधदियां ने, ढेरी हो जांदियां ने, और उस दिन पता चलदा है इत्थे इक करके ही सारियां रिश्तियां दियां दीवारां खड़ियां सन, सारे रिश्तियां दे महल खड़े सन, इत्थे इक दे टुटण नाल सारियां दराड़ां पै गईयां, جیسے بنیاد دے دراڑ پی جائے، بنیاد ایک پاسے ہو جائے تو دھراتل ہو جاندہ ہے محل، ہو بہو پتی ایک پاسے ہو جائے، پتنی ایک پاسے ہو گئی تو داد کے سورے نانکیاں دا محل دھراتل ہو جاندہ ہے، دراڑا پی جاندی ہیں، سب رشتے ڈھیر ڈھیری ہو جاندے نے۔ اور اے دو رشتے نے جنہوں نے میری ضمیر نے کدی خون دا رشتہ نہیں منیا، سکھ تے گرو دا رشتہ، پتی تے پتنی دا رشتہ۔ اور دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی بانی بھی پتی تے پتنی دے رشتے نو خون دا رشتہ نہیں مندی۔ آپ کہندے نے دھن پر اے نہ آکھین، بہن اکٹھے ہوئے ایک جوت دوئے مورتی، دھن پر کئیے سوئے۔ پتی تے پتنی اسنو کہندے نے جو جوت اک ہو گئی ہے، من اک ہو گئے، باویں شریر دو نے اوتے رہن گے، اوتے الگ رہن گے، پر جوت اک ہو گئی ہے۔ باویں اوپر دو کمرے کھڑے نے پر تھلے بنیاد اک ہے، باویں نہ دو کمرے چ الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ ڈھنگ دا فرنیچر ہے، الگ الگ ڈھنگ دی سجاوٹ ہے، پن بنیاد اک ہے۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج پتی پتنی دے رشتے نو خون دا رشتہ نہیں مندے۔ اور روح زمین تے یہی اوتاری پرش ہے جس نے بلند بانگ کہہ دیتا اے کوئی خون دا رشتہ نہیں ہے، اے تے ایک جوت دوئے مورتی، دھن پر کئیے سوئے۔ اے جوت اک ہے، من اک ہے، وچار اک نے، صرف شریر دو نے اور پریپورن پرماتما نے اس طرح دے دو شریر بنائے نے، پر من اک نے۔ مہاراج کہندے نے بھول کے بھی انہوں پتی پتنی نہ آکھنا، جو ساری زندگی ایک کوئی مکان دے چ رہے نے، پر جوت اک نہیں ہو سکی۔ دھن پر اے نہ آکھیں، مہاراج کہندے نے بھول کے بھی نہ آکھو، اے پتی ہے، اے پتنی ہے۔ دھن پر اے نہ آکھیں، بین اکٹھے ہوئے ساری زندگی اکٹھے رہے، ایک کو مکان دے چ رہے، ایک کو استھان دے چ رہے، دنیا دی نظرہ چوی اس طرح جاپے جویں کٹھے رہ رہے نے، خوش خرم رہ رہے نے، ٹھیک رہ رہے نے، پر صاحب کہندے نہیں۔ دھن پر اے نہ آکھین، بین اکٹھے ہوئے ایک جوت دوئے مورتی، دھن پر کئیے سوئے۔ دوہاں دی جوت اک ہو جائے، وچاراں دی اتنی گہری سانج ہو جائے، ایک پتنی ہو جائے، ایک پتی ہو جائے، ایک دوجے دی پت، ایک دوجے دے ہاتھ چ ہوئے، ایک دوجے دی عزت ایک دوجے دے ہاتھ چ ہوئے، اور اپنے ہتھاں نو اتنا سنبھال کے رکھن کہ میرے ہاتھ دے وچ کسے دی پت ہے، میرے ہاتھ دے وچ کسے دی عزت ہے، میرے ہاتھ دے وچ کسے دا سکون ہے، میرے ہاتھ دے وچ کسے دی شانتی ہے، میرے ہاتھ دے وچ کسے دی زندگی ہے۔ اپنے ہتھاں نو پتی سنبھال کے رکھے اور اپنے ہتھاں نو پتنی سنبھال کے رکھے، اور اس طرح جوت اک ہو جائے تو صاحب کہندے نے اے پتی پتنی نے۔ اور یہی ایک رشتہ ہے جو دادکیاں دے رشتے نو جنم دیندا ہے، نانکیاں دے رشتے نو جنم دیندا ہے، سوریاں دے رشتے نو جنم دیندا ہے۔ یہ رشتہ ٹوٹ گیا اور یہ رشتہ ہے نہیں تو سورے کتھے، نانکے کتھے تے دادکے کتھے؟ گرو نال ہی کوئی سنبند نہیں تو رشی ہونا، سنت ہونا، بھگت ہونا، جوگی ہونا، مہان تیاگی ہونا، بیراگی ہونا، یہ سب کچھ کتھے ہے؟ یہ پرگٹی نہیں ہو سکتا، یہ اجاگری نہیں ہو سکتا۔ اور باقی رشتے جنم ہی نہیں لے سکتے جے پتی تے پتنی دا رشتہ نہیں۔ تو منکھ دے پراناں وچ بڑی پربل پیاس ہے، ایک چھوٹا جہا بچہ ہے، چاہی دیے ماں، چاہی دا پتا، پر جیسے جیسے یہ وڈا ہوندا ہے اور اس نو تنہائی اکھر دیئے تو چاہی دیئے بہن، چاہی دا گھرا، ماں باپ نال برابری نہیں کر سکدا سی، ایسا بھی چاہی دا ہے جتھے کچھ برابری محسوس ہوئے۔ بہن تے برا دیچ برابری ہے، بھائی بھائی دیچ برابری ہے، اور جتھے برابری نہ ہوئے اتھے انہاں نو دو برا کہنا بے مینی ہے۔ جتھے برابری نہیں شاید وہ بہن تے برا نہیں نے۔ ماں باپ نال برابری کرنی اوکھی سی، ماں وڈی ہے، پیو پیو ہے، اس دے ہتھاں چ پلے ہے، وڈا ہویا ہے، और उस दी असीसा नाल इसने चलना फिरना सिखया, वड्डा होया है। इदे प्राण इदे आत्मा तड़प दिए कोई ऐसा भी होवे जिन्हों मैं कह दिया ए मेरे वर्गा मेरे वर्गा है, बराबरी तू चाही दी है भैन, चाही दा भरा बहुत वड्डी घाट रह जांदी उस मनुख दी जिंदगी च जिसका भरा ना होवे। लोकी कह देंदे ने इदियां ते बावां ही कोई नहीं, और कह देंदे ने इदी ते बहन नहीं, इदा ते कोई मान ही नहीं। भैन भरा ते मान कर दी है, भरा भैन ते मान करता है। अक्सर ऐसा जो है देखा गया है तो कहने मान तान ही नहीं रह जाता अगर भरा नहीं है, बहन नहीं है। नानक सास भराई, महाराज स्त्री की उपमा इंज पे कर दें, नानक सास सबराई ए पागा वाली है, क्योंकि सबराई ए चंगे भरावां वाली है, ए मान तान वाली है, इहदे भरा ने, एवें नहीं है, इहदे भरा भी ने, यह नहीं आखिया इहदे मां बाप भी ने, नहीं ए भरावां वाली है। उस स्त्री दी भारतीय समाज दे च आद काल तो मान प्रतिष्ठा बनी हुई है, कह दिता जांदा इहदे भरावां वाली है, इहदे भरा ने, एवें नहीं, यह नहीं आखिया जांदा इहदा प्यो भी है, इहदी मां भी है, नहीं। नानक सास सबराई, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने इहदे भरावां वाली है, एवें थोड़ी है। तो भरा भैण दा माण ने, भैण भरा दा माण है, भरा भरा दी बराबरी है, एक रिश्ता भी जो है चाहिदा। अगा चल के प्राणा दे च इक होर प्यास पैदा होंदी है, एक उमंग पैदा होंदी है, विपरीत दी कशिश, जिसनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहने ढंग नाल उजागर कीता है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, ए दुनिया दे ब्रह्म ज्ञानियो एक गल नू समझो, एक गल नू जानो, कोई पुरुष पूर्ण तौर ते पुरुष नहीं, उस दे अंदर अद्धी स्त्री बैठी है, कोई स्त्री पूर्ण तौर ते स्त्री नहीं, उस दे अंदर अधूरा पुरुष भी बैठा है। अगर मां बाप तो ए शरीर आया है, तो इस शरीर दे च कुछ मां दी अंश है, इस शरीर दे च कुछ पिता दी अंश है। कोई पुरुष हो गया तो मैज इस वास्ते हो गया, पिता दी अंश इस दे च ज्यादा है, मां दी घट है। और कोई स्त्री हो गई है, कोई लड़की हो गई है, वो मैज इस वास्ते हो गई है कि इस दे च स्त्री दी अंश मां दी अंश ज्यादा है, पिता दी घट है। लेकिन कोई ऐसा पुरुष नहीं जिस दे अंदर स्त्री नहीं, और कोई ऐसी स्त्री नहीं जिस दे अंदर पुरुष नहीं। तो इत्थों एक विचार चली कि हर पुरुष दे अंदर स्त्री अर्ध अंग विच है, अधूरी है अंदर, और हर स्त्री दे अंदर पुरुष अर्ध अंग है, अर्धांग नहीं। स्त्री नू पुरुष ने अर्धांग नहीं आख्या, ए गल वखरी है कि स्त्री दी दृष्टि च और स्त्री दे संसार दे च पुरुष भी अर्ध अंग है। कारण पुरुष दे अंदर, स्त्री दे अंदर भी जो पुरुष है वो अधूरा है, ए अधूरा पुरुष संपूर्ण होना चाहता है, और पुरुष दे अंदर वो जड़ी अधूरी स्त्री है वो संपूर्ण होना चाहती है। अंदरों इसनू पूरा करना प्रकृति ने कोई साधन नहीं बनाया, इसनू बाहरों पूरा करना पैंदा है, और इसे ही पूर्ण करन नू ही विवाह ते आनंद कारज कहंदे ने, शादी कहंदे ने। अधूरी स्त्री अज संपूर्ण होण लगी है, अधूरा मनुख अज संपूर्ण होण लगा है, वो अर्ध अंग अज संपूर्ण अंग हो गई, और वो अर्ध अंग जो पुरुष सी अज संपूर्ण होया। शायद इसे वास्ते बहुत वड्डी खुशी मनाई जांदी है, अधूरा संपूर्ण हो गया, अधूरा अज पूरा होया। दरअसल स्त्री अज संपूर्ण हुई है और पुरुष अज संपूर्ण होया, तो संपूर्णता होनी एक बहुत वड्डी खुशी है। संसार दे तल देते ए संपूर्णता है, और संपूर्णता बहुत वड्डी खुशी है। सारी दुनिया विच मनुखी जगत विच इस खुशी वर्गी होर फिर कोई खुशी नहीं है। समझ लो सारियां खुशियां इस एक खुशी दे आले दुआले परिक्रमा कर दिया ने, घूमदिया ने, और प्रार्थना कर दिया ने। ए मूल खुशी है, ए बुनियादी खुशी है। और अक्सर ऐसा जो है देखते हैं ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਰਧ ਅੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਏ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਬਾਲੀ ਇਹ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਜੋ ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਸ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਅੰਸ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੂਰੀ ਅੰਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੰਸ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਸਤਰੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰਾਪਣ ਰਹੇਗਾ, ਖਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੋਝ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਸਤਰੀ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਝਲਕ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਝਲਕ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦੀ ਝਲਕ, ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਝਲਕ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਝਲਕ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਕੋ ਅਤ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਇਹ ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲਪਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਪਿਓ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਛਲਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਮੜਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਰਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਬਤ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਚ ਉਸ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। और सिर्फ घर नहीं परिवार भी चाहिए, अगर परिवार नहीं तो घर ही नहीं, घर देच ओ भी चाहिए जिसनु कहा जाए घर वाली, घर देच ओ भी चाहिए जिसनु कहा जा सके घर वाला, घर वाला ही नहीं है, घर वाली ही नहीं है तो घर का दा घर की है, कोई इट्टां दी ढेरी नु घर थोड़ी कहंदे ने, कोई पत्थरां दे इकट्ठ नु घर थोड़ी कहंदे ने, नहीं घर है तो इस दी शोभा है घर वाले नाल घर वाली नाल। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हे परिपूर्ण परमात्मा ए जो तेरी मेरे ते निगाह हो गई है, ए जो तू मेरे ते अपनिया निगाह सुट दितियां ने, ए जो मैं तेरी निगाह दे थले आ गया, ए मैनु सुंदर महल दी प्राप्ति हो गई है, परिवार दी प्राप्ति हो गई है, घर दी प्राप्ति हो गई है, हुक्म सोई तुद भाव सी होर आखण बहुत अपार। दरअसल मनुख दे प्राणा दे च ए भी प्यास है कि मैं घर दे च जो कुछ आखा मेरी गल ठुकराई ना जाए, मेरा बोल काबले कबूल हो, मां नू पिता नू पत्नी नू पुत्रा नू भरावां नू भैणा नू कम से कम मेरी गल रद्द ना कीती जाए। साहिब कहिंदे ने हुक्म सोई तुद भाव सी होर आखण बहुत अपार, ऐ मेरा हुक्म करना है केड़ा जिड़ा तेरे हुक्म नू पा जाना है, जिड़ा तेरी रजा दा मैनू चंगा लगना है, जो तेरा हुक्म मैनू चंगा लगन लग पे है, मानो यही मेरा हुक्म पे चलदा है, यही मेरी गल पे चलदी है, मेरी गल कोई रद्द नहीं करदा। दरअसल एक बहुत वड्डी सच्चाई अध्यात्मक दुनिया विच प्रगट होंदी है उस दिन, जेड़ा मनुख परमात्मा दा हुक्म मनदा है जगत उसका हुक्म मनदा है, और जो परमात्मा दे हुक्म नू एक पासे कर देंदा है उस मनुख दे हुक्म नू भी दुनिया बहुत चिर तक मन नहीं सकदी, ओनू भी नजरअंदाज कर दिता जांदा है, उसनू भी एक पासे सुट जांदा दिता जांदा है, जो उस एक दा हुक्म मन लैंदा है उसका हुक्म सारी कायनात ते चलदा है। तो हुक्म सोई तुद भाव सी और आखण बहुत अपार, और ते बहुत कुछ कहना है बहुत कुछ कहना है, पर हे परिपूर्ण परमात्मा वास्तविक तेरी रजा विच राजी रहना, तेरे हुक्म नू जो है चंगा समझ के ओनू अपने अंदर धार लेना, तेनू पा जाना, बस यही अपनी गल दा चलाना है, यही जो है असी अपना हुक्म चलांदे आ। नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार, ओ परिपूर्ण परमात्मा सच्चा है, मालिक है, पातशाह है, ओ किसी कुल पुछ पुछ के बख्शिशा नहीं देंदा, दे ही जांदा है। किसी खेत कुल बदल पुछदे नहीं बरसीए के ना बरसीए, किसी घर कुल सूरज पुछदा नहीं रोशनी देईए के ना देईए, किसी घर दे कोलो चंद्रमा पुछदा नहीं मैं अपनियां किरणा खिलेरा के ना खिलेरा, और किसी मनुख कोल पवन पुछदी नहीं तेनू छुआ के ना छुआ। महाराज कहिंदे ने इस तरह परमात्मा पुछदा नहीं, बिना पुछिया ही सब कुछ देई जांदा है, बिना पुछिया ही सब कुछ वंडी जांदा है, बिना पुछिया ही सारिया नियामतां झोली दे जो है पाई जांदा है। आखरी रहाओ चौथा रहाओ, बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़ी है मन में चले विकार। गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक इथे सौण दे अर्थ ने ऐशो इशरत, परिवारिक ऐशो इशरत, परिवारिक सुख साधन, परिवार दा सारा सुख दा माहौल। बाबा होर सोना खुशी खुआर, जित सुते तन पीड़िए मन में चले विकार। होर सोना होर ऐशो इशरत, इस तो इलावा जो सतगुरु देव जी महाराज ने सवाग दे दसी, इस तो इलावा जिहड़ी ऐशो इशरत है महाराज कहिंदे ने तन नूं पीड़ित कर देंदी है, मन नूं रोगी कर देंदी है। ए पावन पवित्र वाक धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ऐसा है, चार रहावां दे च जिंदगी दे मूल सिद्धांत सारे दे सारे बयान कर दिते ने, और तय दिल नाल जो इन्हां नूं हिरदे दे च वसा लवे लोक परलोक उसका सुहेला हो जाता है, तन दे तल ते अरोग रहिंदा है और मन दे तल ते आनंदित होंदा है, इस तरह उसका लोक परलोक सुहेला हो जाता है। और ये पंक्ति उस दे पूरी उतरदी है, ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोलय

ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਲ ਕਿਧਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਲੋਕ ਲੱਭਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਧਰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਸਨਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਨਦ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੰਦ। 22 ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, 19 ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਪ ਤਪ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਪ ਤਪ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵਧੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਧੇ, ਜਪ ਤਪ ਵਧੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਧਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਧਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਧਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਜਾਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਰ ਭੇਟ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਕਾਰ ਵੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਲੋਭ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਗਏ ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਪਰਬਲ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਮਸੰਦ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਰਸਕ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਧਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਔਰ ਧਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਹ ਮਸੰਦ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤਿਅੰਤ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ,
ए प्रचलत आपने कीता और ए अधिकार इकनो नहीं पंजा नु दिता। पंज आइंदा अमृत छकाया करनगे। केड़े पन जो गुरु नो प्यारे ने ते जिन्हां दे अंदर गुरु दा प्यार है, रोम रोम दिच गुरु दा प्यार है। ऐसे पन जो गुरु नो प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे अंदर है, ओ वारी वारी पंज बाणियां पढ़न। जपजी साहब, जाप साहब, सवैये, चौपाई ते आनंद साहब। पंज अपनी दृष्टि नो बाटे वे दे जो पानी है उस दे च रखन, ताके हिरदे नो जोड़ के पड़ी होई ये बाणी दृष्टि दे राही उस बाणी दा पानी विच प्रवेश करन, ताकि वो पानी पानी ना रहे, वो पानी अमृत बन जाए। हकीकत है हिरदे विच लोभ है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच वासना है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच प्रबल हंकार है, अखां राही प्रगट होंदा है। पर हिरदे विच वसी हुई बाणी होवे तो ये बाणी दा अमृत अखां दे राही बाहर प्रगट होंदा है। और उस सख नूं अगर एक टेक पानी विच रखिया जाए तो बाणी दा वह अमृत अखां दे राही पानी विच प्रवेश कर जांदा है। इस तरह पंज प्यारे पंज बाणियां नूं पढ़ के अमृत नूं गुरु विधि अनुसार तैयार करदे ने। यह प्रथा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चलाई। विचे खंडा नाल फेरी जाना, खंडा शक्ति का प्रतीक है। जिस शक्ति तो ही सारा संसार पैदा होया, खंडा प्रथमे साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज उत्पत्ति दा खेल दा चाहे बनाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, ये सब कुछ पसारा खंडे तो होया, शक्ति तो होया। खंडा शक्ति दा प्रतीक, उसे तो बाणी आई है, उसे तो संसार आया है, उसे तो अमृत आया है। इस तरह बाणी दे राही पाणी विच शक्ति दा प्रवेश, परमात्मा दा प्रवेश, उस दे रस दा प्रवेश। पंज प्यारे फिर अगां चल के इस नूं छकांदे ने जो अबलाशी ने, जिन्हां दे अंदर अमृत दी तड़प पैदा हुई है। ये इस तरह है जिवें किसी बच्चे ने स्कूल विच दाखला लेना है तो उसनूं स्कूल दी यूनिफॉर्म पहननी पैंदी है, दाखला लेना पैंदा है, एडमिशन फीस भी देनी पैंदी है, दाखला फीस भी देना पैंदा है। शुरुआत विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फीस सीस दी मंगी सी, सिर दे। विसाखी वाले दिन खुशकिस्मती सहजे सहजे पंज तैयार हो गए ये फीस देन नूं। ये सीस हे गुरदेव जिस दिन थोड़े चरणा ते रखिया सी असी उस दिन दा ही समझ लिया सी थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है। इस तों बाद जद पंज प्यारियां ने ये प्रथा चलाई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हुक्म दे मुताबक, तो इत्थे भी भाव ओही रखना है सीस गुरु दा है, तो इत्थे भी भाव ओही रखना है सीस गुरु दा है। इस वास्ते जब सीस गुरु दा है तो सीस गुरु वर्गा होवे, इस दे सोचनी परमात्मा दी, इहदा स्वरूप गुरु वर्गा। इस तरह गुरु घर दे चरणामृत दी थां ते खंडे बाटे दी अमृत दी जो है प्रथा चली, और ये धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो है चलाई। लेकिन जदों आपने प्रथा तैयार की थी तो देखना भी चाहिया कि वाकई ये हुण सिंह अगे सिंह सजा सकनगे, अमृत छका सकनगे। तो जैसे एक उस्ताद बच्चियां नूं पढ़ाउण लई खुद पढ़दा है, पहले खुद पहाड़े पढ़दा है, नाल बच्चियां नूं पढ़ाई जांदा है।
फिर ऐसा है बच्चिया नु कहिंदा हुण तुसी सुनाओ मैं सुनना है। पहले आप वक्ता हुंदा है, बच्चे श्रोता हुंदे ने, फिर बच्चे वक्ता बनदे ने, उस्ताद श्रोता बनदा है। ये देखण लई कि वाकई बच्चा निपुण हो गया। छकाया पहले अमृतमयी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत, और इस तरह पंज प्यारे तैयार की थे। फिर देखना चाहिए वाकई ये प्यार नाल भर गए ने, ये महान हो गए ने, और जो कार्य मैं चाहना इसनु ये कर सकनगे। तो आखिया हुण मैनू अमृत छकाओ। तुसी मैनू सीस भेट कीता सी, मैं सरबंस भेट करांगा, मैं सब कुछ भेंट करांगा। मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन ही को। मेरे घर देच मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है सब कुछ थोड़ा, सब कुछ थोड़ा। और जद पंजा ने अमृत छकाया है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी मंग बड़े सुंदर बोलने सर्वलोक ग्रंथ देच, सतगुर इना पंजा कोल अमृत दी दात मंगदे ने। पंजा नूं साफ कहंदे ने, सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचो में मेरो वासा, पूर्ण करो धरो जय आसा। इना पंजा विच मेरी झलक है, ये पंजा दा स्वरूप मेरा ही स्वरूप, इना विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं रहा। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इना पंजा को अमृत दी दात मंगदे ने। अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीने हो। जिस तरह ये अमृत लेने ने गुरु नानक पासों प्राप्त किया से, इस तरह मैं थड़े कोलों प्राप्त करना है। और वाकई जद पंजा ने छकाया सतगुर प्रसन्न होए, हां तुसी संपन्न हो गए, वाकई तैयार हो गए, और तुसी सिखी दा सही प्रचार कर सकोगे। वाकई जो गुरु नू प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे रोम रोम दे चे, ओही अमृत छका सकदे ने, और ओही विधि पूर्वक गुरु नाल जो है जोड़ सकदे ने। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी जिसते बख्शिश है, प्यार नाल भरिया होया हिरदा है, वो गुरु दा प्यारा है। अमृत छक के उदी दृष्टि अमृतमयी हो जांदी है, उसदे बोल अमृतमयी हो जांदे ने, उसदा जीवन अमृतमयी हो जांदा है। क्योंकि अमृत छकदे हां उसनों रहत बहत धारण करनी पैंदी है। उस रहत दी जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, रहणी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब

धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दा हुक्म रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना। दरअसल सिख दा स्वरूप ही ता बनदा है जे उस कोल रहनी होवे। रहनी दो तरह दी, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब, और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद तक, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु मंत्र दा जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उसको समय। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार ए शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ए सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे दिख। रहत नामे इस तरह के बोलने, ज्यों काहू पे गधा नवायो, होल माल ताए मूंड धरायो। जिवें कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे, ज्यों काहू पे गधा नवायो, फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर ताकी शोभा नाही, हासी होय होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे, लोकी उसनु वड्याण नहीं लगे, बल्कि हसन गए उसते, भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गए। तैंकी कर ताकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है? अगां फरमान कर देने, तिम कुरतियन केस रखाए, कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु इशनान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते ही रख होता है। सिर्फ सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर फरमान, निशाने सिखी ई पंज हरफ का, जिथे हिरदे दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा इना पंज ककारा नाल। कक्का के

एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले की अपनी एक महानता अपने बोलां विच अपने शब्दां विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साढ़े शरीर की यह सिरजना की है इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी फिजां चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देंदा है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां डोल दियां या शाखां अपना शिंगार बदल रही ने उदास दिखाई दे रही नगन दिखाई दे रही ने ये शाखां दरख्तां दियां। हो बहु मनुख ते मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखण नूं मिलदी है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसम बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर शिंगार कीता है। किधरे पीले रंग दा किधरे गुलाबी रंग दा किधरे चिट्टे रंग दा इतने सुंदर शिंगारमई वस्त्र धरती दा चप्पा चप्पा सुहावना हो जांदा है। ए मौसम बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पांदा है। गर्मी दी रुत आ गई है। मन दी हालत कुछ होर हो गई है। ठंड आ गई है। शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है। सानू कपड़े बदलने पैंदे ने मोटे कपड़े गर्म कपड़े लभने पैंदे ने और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़िया नूं एक पासे करन ते। हू बहु जो समा है दिन दे चार पैर रात दे चार पैर जिथे रुत दा असर है मौसम दा तन ते मन ते असर है उथे चार पैरां दा जिसनूं समा कहिंदे ने वक्त कहिंदे ने इसका भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदे सौ गया तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदे संपूर्ण हो जाती है। अखां खुल जांदियां। एक गल वखरी है अगर मनुख समय दे मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ए उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हां प्रकृति पंछियों नूं जगा देंदी है पशुओं नूं जगा देंदी है क्योंकि उन्हां दी नींद स्वाभाविक है प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदे आ चिड़िया पंछी पशु करीबन करीबन सो जांदे ने। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठदे ने गऊआं उठ बैठदियां ने बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊआं दे। सारे दा सारा पशु पक जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नूं प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नूं भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे तो देखिया जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया
परमात्मा तो भी दूर हुंदा गया। परमात्मा दे निकट आण लई इसनू प्रकृति दे निकट आना ही पएगा, प्रकृति दे प्रभाव नू कबूल करना ही पएगा और उहदी नियमावली नू जिंदगी दा अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मक चिंतन करदे सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी गोल रहिंदी सी, मन दी साधना ते तल ते जीण वाले अंतरमुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ विच आया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। किंज ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियांदा है। ये नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है, भार हल्का आउंदा है, आलस मध्यम आउंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन दी भी लोड़ है, मन भजन भी चाहुंदा है। इस समा कहिंदे ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे एक पल दी साधना बराबर हो जांदी है, समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने, जे एक होए तां उगवे रुत्ती हों रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे मुकम्मल होवे, पर बीजण वाली रुत भी ते चाहिदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा, सही ढंग नाल ओ प्रफुल्लित भी नहीं होंदा, ओ पूर्ण फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ए जो रात दा चौथा पैर है, इस नू साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा ए ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म दे चिंतन दा समय है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या, ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनू इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, ओ सुबह जो स्वभावक अल्लाह नू चेते करा देंदी है। थोड़ी जिया भी किसे मनुख दे अंदर अंतरमुखी होने की जागृति है तो यह समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज का फरमान, हर अमृत वेले वत्थे का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाम। अंतिशकरण की धरती देच जो अमृत वेले नाम का बीज बो छड़दा है, बरकता नाल झोलियां भर जांदियां ने, और लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी दे विच पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जांदे ने, अवतारी पुरुष भी जो है सदके जांदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहंदे ने, शबद कुर्बान खाके राहे संगत दिले गोया हमें बस आरजू कर। एक कोई आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले जिड़ियां संगतां थोड़े मार्ग ते चल पैंदियां ने, उन्हां दे कदमां दी खाक मैनू बना। वो कदम बड़े पावन ने, वो चाल बली महान है। अमृत वेले दी चाल गुरु दी तरफ, दरअसल परमात्मा दी चाल है। ये परमात्मा दी तरफ चलना है और ये परमात्मा तक पहुंचण दा एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंद लाल ते इत्थे तक कहंदे ने, थोड़ी जिया भी जिस किसे दे अंदर जागृति पैदा हुई है, उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुत्ता रह गया है, मानो उदी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहेबान शौक, गोया हराम करदन आइंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जिया भी बेदारी जागृति किसे दे अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੌਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੱਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ, ਨੱਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹਤ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਵਾਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਬਚਣਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਜਰਾਏ ਤਾਹੇ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਪਵਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਜਰਾਏ ਤਾਹੇ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਤੋ ਪਵਨ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਆਖਰ ਪਵਨ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਸਖਾਕ ਨੂੰ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਟੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ। ਜਤ ਕਥ ਸਿੱਖ ਪਗ ਧਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਤ, ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕੋ ਡਾਰੀਏ। ਜਿੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਬੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਵਨ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂਸ ਦੀ ਖਾਕ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚ ਵਿਛਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਵਿਛਾਵੇ। ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਪਗ ਧਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕੋ ਡਾਰੀਏ, ਤਹਿ ਪਦ ਪਾਵਕਤ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹੇ, ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਮੋਹੇ ਪਤਤ ਉਧਾਰੀਏ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਤਤ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦਮ ਅਤਿਅੰਤ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਚਾਹ ਨਾਲ, ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੈ ਔਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਸੁਰਸਰੀ, ਤਜ ਬੈਕੁੰਠ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੁਰਸਰੀ ਗੰਗਾ, ਮਿਥ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਕਰਮੰਡਲ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਇਸ ਮਿਥ ਦਾ। ਕਰਮੰਡਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੋਲੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਲ ਆਣ ਕੇ ਗਿਰੇ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰ।
ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकल दी है धारा छोटियां छोटियां जी लगदियां ने वाकई जैसे शंकर दियां जटावां और उना दे चों टपकदा होया ए बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है

0: लखा। और एक ब्रह्मे दे करमंडल दा जल नहीं, लखां ब्रह्मन दा है करमंडल दा जल जो ब्रह्मे दे हाथ दे छोवे। एक शिवजी नहीं, लखां ही शिवजी दे मस्तक दा जल। और एक विष्णु नहीं, लखां ही विष्णु दे चरणा दा जल। सन गंगा बैकुंठ लख, और एक बैकुंठ नहीं लखां बैकुंठ। लखां गंगा, लखां विष्णु दे चरणा दा जल, लखां ही शिवजी दे मस्तक दा जल, और लखां ही ब्रह्मियां दे करमंडलां दा जल। सन गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लिवलाई, साधु धूर न पुजने साध संगत सतगुर शरनाई। अमृत वेले सत्संग विच बैठ के जो अपने मन दी साधना कर रहा है और सुरत शब्द दे जोड़ के बैठा है, भाई गुरदास जी कहिंदे ने उसके कदमां तों लखां गंगा कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां। वो इतना महान है। फिर सतगुर दी बाणी ते खुल के कहिंदी है, जन के चरण तीरथ कोट गंगा। ऐसा जो पुरुष है उहदे चरणां दी जिहड़ी धूल है, मानो करोड़ां गंगा दा इशनान है। उसका आत्म चिंतन अमृत वेले दा चरण जिथे रखेगा, रेत दे सरिया नूं अक्सीर बना देगा। इतनी महानता है उस समय साधना करन दी। देखिया जाए पंछियां दे खूबसूरत नगमे हैं उसे समय सुनन नूं मिलदे ने, चहचहाट कलोल खेड़ा ते खुशी। ऐसे समय अगर कोई सुत्ता रह गया है तो उस तो ज्यादा होर कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन लई रूहे जमीन बेच, उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लभना भी औखा है। वह महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, परिपूर्ण परमात्मा दे चरणा दे सब तो वड्डी जिहड़ी भेट है वह भेट अमृत वेला ही है। बस उस समय नू तू परमात्मा दे अगों रख भाव, वह समा परमात्मा लई है। धन कमाण दा अलग वक्त, भोजन छकण दा अलग, शरीरक क्रियावां दे अलग समय, और समाजिक संबंध, आर्थिक रिश्ते, राजनीति दा वेला, इस दे लई अपने अपने समय ने। पर रात दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलन दा समय, ईश्वर नाल जुड़न दा समय। इस समय नूं तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर। ए समा अपने कोल ना रखें, सुता ना रह जाएं, उठ उस समय। और ए उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है। यही कारण है कह दिता गया, ए सुबह सुबह अल्लाह दी है, ए सुबह ए सवेर ए महूरत ब्रह्म है, ए समा अमृत वेला है, अमृत दी बरखा हुई है। दरअसल कहिंदे ने उस समय माया सुती पई हुंदी है। माया दे सुते रहने तो मुराद ए है, अक्सर लोग सुते पए ने, तो दुनिया जे सुती पई है तो बोल भी बंद ने। करीबन करीबन 90% जो मनुख दे बोल होंदे ने समाजिक होंदे ने, आर्थिक होंदे ने, राजनीतिक होंदे ने, और उन्हां बोलां दे नाल वातावरण मलीन होंदा है। उन्हां बोलां दीआं तरंगां चारों पासे छा जांदीआं ने। नवें नवें इबादत करन वाले बंदे नूं, ध्यान साधना करन वाले बंदे नूं ए बोल और उन्हां बोलां दीआं तरंगां प्रभावित करदीआं ने, नाम जुड़न दे च बाधा खड़ी कर देंदीआं ने। तो जगत ते सुत्ता पिआ ए तरंगां पैदा नहीं हो रहीआं, ऐ मनुख तू उठ बैठ अपने अंदरों अध्यात्मक तरंगां पैदा कर, ताकि परमात्मा दी बख्शिश जो बरस रही है उहदा तू पात्र बन सकें और अपनी झोली दे जो है पा सकें। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस नूं ऐसा कहा, अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। अमृत वेले उठ के सच्चे नाम दा चिंतन ते उस वड्डे दियां वड्याईयां दी विचार तो कर। एक गल वखरी है कि दिन भर भी तू विचार कर सकदा है, पर ओ तरंगा उस विचार नूं गहरा नहीं जान देणगियां जो चारों पासे फैलियां होईयां ने। रात नूं शरीर विश्राम दे जाना चाहुंदा है तो शरीर दी चेतना शरीर दी शक्ति सारी सुकड़ रही है। मुश्किल है उस समय तू संघर्ष करके प्रभु दा जो है चिंतन कर सके। ए समा ए वक्त मदद करता है। जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होके चल रहे है पर एक ने सिर दे एक मन का वजन रखे होया है तो कठिन होवेगा उसनु जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होंदा है दिल दिमाग ते कोई बोझ नहीं होंदा। उस समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसकी महिमा गायन करदे होया कहा है दुनिया दियां सारियां बरकतां उस मनुख दे झोली विच आण पैंदियां ने जो उस समय उठ के वाहिगुरु नाम दा अभ्यास करता है वाहिगुरु नाम दा चिंतन करता है। इस चिंतन द्वारा उसका प्रभु नाल संबंध जुड़ता है। ते प्रभु नाल संबंध जुड़न का मतलब की है महाशक्ति नाल संबंध। और जैसे महाशक्ति नाल संबंध जुड़ता है महाशक्ति उसके अंदर प्रवेश होनी शुरू हो जाती है। ईश्वर नाल जुड़िया होया मनुख कमजोर नहीं हो सकता। तिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रहा भरपूर। जिन्हां दे अंदर राम भरपूर होके समा जांदा है महाबली आउंदे ने योधा आउंदे ने सूरबीर आउंदे ने और अमृत वेले दी इस बरकत नूं प्राप्त करके महान योधे ओ बन जांदे ने। चौथे पैरे सुभा के सुरतियां उपजे चाव तिन दरिया वासम दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान जो गहरे तल दे प्रभु चिंतन करन वाले ने विचारक ने दार्शक ने रात दे चौथे पैर उन्हां दे अंदर उमंग पैदा हो जाती है तरंग पैदा हो जाती है। चौथे पैरे सुभा के सुरतियां उपजे चाव तिन दरिया वासों दोस्ती मन मुख सच्चा ना। उना दी दोस्ती इशनान नल हो जांदी है उना दे मन देच और उना दी रसना देच मुख देच परमात्मा दा नाम होंदा है सच नाम होंदा है। इस नाल वो अपने मन नल संघर्ष करते ने। दरअसल परम पद दी प्राप्ति मन नल संघर्ष करके जितन तो बाद ही प्राप्त होंदी है। जो लोग ऐसा नहीं करते संघर्षमयी बिरतियां विपरीत दिशा की ओर चल पैंदियां ने। जो इस समय तो लाभ नहीं उठांदे और मन तो पार होके परमात्मा दे अस्थान ते नहीं पहुंचना चाहते तो बिरती दा प्रवाह जीवन शक्ति दा प्रवाह विपरीत दिशा की ओर चल पैंदा है। ऐसे मनुख मन नाल संघर्ष ना करते हुए समाज नाल संघर्ष करन लग पैंदे ने कानून नाल संघर्ष करन लग पैंदे ने। संघर्ष करने की बिरती ते मनुख दे अंदर है। समाज नाल संघर्ष करना है संसार नाल संघर्ष करना है। अक्सर ऐसे लोगों नूं रात चाहिए है रात दी तारीकी चाहिए है पर मन नाल संघर्ष करना है उजाला चाहिए है। अमृत वेला दिन दी शुरुआत है और संध्या शाम दी रात दी शुरुआत है। कदी गौर नाल देखिए जिथे मनुख अपनी जिंदगी दे सवेर लेना चाहता है चानना लेना चाहता है धार्मिक मंदरां दे बूहे अमृत वेले खुलते हैं। मस्जिदां दे दरवाजे मंदरां दे दरवाजे गुरुद्वारियां दे बूहे अमृत वेले खुलते हैं। पर जो अपनी जिंदगी नूं तारीकी नाल भरते ने अचेतपना अपना वधांदे ने मन नूं बेहोशी दी दुनिया च लै जाके तारीक मंडलां विच पहुंचदे ने ऐसे सथलां दे बूहे दरवाजे अक्सर रात नूं खुलदे ने। शराबखाने ने जुए घर ने वैश्याले ने क्लब थिएटर ने इन्हां दी रौनक रात दी तारीकी दी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी ने सारे जीवन नूं मंडिया है और आप कहिंदे ने कुछ तारीकमई है कुछ प्रकाशमई है। कुछ प्रकाश दी ओर जा रहे है कुछ अंधकार दी ओर जा रहे है। कोई प्रकाश दा प्रेमी है कोई अंधकार दा प्रेमी है ऐसा सिर्फ मनुखी दुनिया च ही नहीं पशु पंखियां दे च भी है। बहुत सारी बनस्पति है रात नू खिड़दी है, दिन दे उजाले विच सूरज दियां किरणां विच मुरझाई रहिंदी है, कुमलाई रहिंदी है। रात की रानी, रात का राजा, हिमालय दे बेशतर फुल और इधर आसाम दियां पहाड़ियां ते बहुत सारे फुल रात नू खिड़दे ने, और दुनिया उन्हां फुल्लां नू वेखण वास्ते जांदी है जो रात दी तारीकी विच खिड़दे ने और दिन दे उजाले विच कुमला के झड़ जांदे ने। पर फुल ओ भी ने जो सवेर होंदिया ही खिड़दे ने और पूर्ण उजाला होंदिया पूर्ण जोबन ते आउंदे ने। दिन नाल संबंध है, प्रकाश नाल संबंध है। तो बनस्पति करीबन करीबन ये दो हिस्सों विच वंडी हुई है, कुछ प्रकाश नाल खिड़दी है, कुछ अंधकार नाल खिड़दी है। अगा चलिए पशुआं दा जगत देखिए, पंछियां दा जगत देखिए। उल्लू दी जिंदगी रात दी है, चमगादड़ दी उड़ारी रात दी है, बेशतर मच्छर इना दी जिंदगी रात दी है, बीमारी दे कीटाणु इना दा जीवन रात दा है। रात नू प्रसन्न होंदे ने, रात नू उड़ारियां लांदे ने। और अक्सर जिहड़े पशु पक्षी रात नाल अपना संबंध जोड़दे ने, देखण दे चाया हिंसक ने, मच्छर जीव जंतुओं दा खून पींदे ने, बेशतर दरिंदे रात नू अपनी शिकार ते जो है चलदे ने, सप रात नू खुड दे चो निकल के भ्रमण करदा है, ठूमे रात नू ही भ्रमण करदे ने, और दरिंदे रात नू ही जानवरां ते हमला करके उन्हां नू चीरदे ने, फाड़दे ने। लेकिन ऐसा भी है कुछ पशु जगत पंछी पो फुटदे आ उठदे ने और दिन भर अपनी चर्या विच लीन होके जीवन नू प्रकाश विच बतीत करदे ने, सब कुछ प्रकाश दे जो है करके प्रसन्न होंदे ने, खुश होंदे ने। चिड़ी चवगी पो फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। इधर पो फुटी, इधर चिड़ी ने चह चहाना शुरू कीता, इधर पो फुटी, इधर संत दे मन ने भी चह चहाना शुरू कीता, इधर चिड़िया ने संगीत छेड़िया, इधर संत ने वाहिगुरु दी ध्वनि छेड़ी, इधर चिड़ी ब्रह्म चिंतन दे चलीन होई, रोज दी किरिया दे चलीन होई, इधर संत परम आनंद समाधि दे चलीन होया और परम आनंद माणदा होया प्रभु दी प्रसन्नता दा पात्र बनिया। अमृत वेले दी सवेर नाल जिन्हां दा जीवन आरंभ होंदा है, मानो सवेर दे उजाले दे प्रेमी ने, उजाले दे जो है पुजारी ने, उजारे नू सजदा करदे ने, परिक्रमा करदे ने और झुके रहिंदे ने उजाले दे अगों, प्रकाश दे अगों। तो बेशतर पशु ने, पक्षी ने जो दिन नाल अपना संबंध जोड़दे ने। जिथे पशु जगत, कीड़े मकोड़ियां दा जगत, पंछियां दा जगत इस तरह वंडिया होया है, मनुखी दुनिया भी वंडी हुई है। जिहड़े जीवन प्रकाशमयी ने, प्रकाश नाल प्रेम करदे ने, ए अक्सर सवेरे ही खिड़दे ने और सवेर इन्हां नू खेड़ा देंदी है। पर जिहड़े जीवन तारीकमयी ने, पूर्वले संस्कारां करके ए रात नू ही खिड़दे ने, दिन नू कुमलाए रहिंदे ने, मुरझाए रहिंदे ने, ए रात नू ही खिड़दे ने, रात इन्हां नू खेड़ा देंदी है, रात इन्हां नू हुलास देंदी है। और इस तरह दे लोगां ने क्लब, थिएटर, जुए खाने, वैश्याले ते शराबखानियां नू जन्म दित्ता है। ए लोग ही इन्हां दी रौनक ने और ए रौनक रात नू बनदी है। सारा जीवन इसे तरीके दे नाल जो है आपस दे जो है वंडे होया है, एक दिन दी सवेर नाल, एक रात दी तारीकी नाल जो है जुड़े होया। तो एक गल स्पष्ट हो गई, छोटियां छोटियां घटनावां जिंदगी दे बहुत वड्डे पलटे लियांदियां ने। ए सवेर दा थोड़ा जिहा आनंद, थोड़ी जिहा आनंद दी झलक भी जिस दे अंदर पैदा हो जांदी है, वह पूर्ण प्राप्ति दे मार्ग ते चल पैंदा है। तो उसनूं एक गल दी समझ आ जांदी है, मन नाल संघर्ष कीते बिना उस परम आनंद की प्राप्ति करनी बहुत औखी है। बाधा मन दिए, रस्ते ज रुकावट मन दिए और कुछ भी नहीं। रात की तारीखी दा जिन्हां दा जीवन है, कई दफा इन्हां दे मन इतने तारीखमई हो जांदे ने पशु पक्षियों की तरह हिंसक हो जांदे ने। जैसे उल्लू रात नू सुते पंछियों दे आलणे च जाके अंडे चुक लैंदा है, छोटे छोटे उन्हां दे बच्चे चुक लैंदा है, खांदा है। हू बहु डाकू कातल दुराचारी इन्हां सारियां दा कर्म रात दी तारीकी दे च है। इन्हां नू सफलता भी रात दी तारीकी देंदी है, अंधकार देंदी है। इन्हां नू अपने कम दी पूर्ति लई पाया तकमील तक कम नू ले जाण लई अंधकार चाहिदा है, हनेरा चाहिदा है, रात चाहिदी है। पर मन नाल संघर्ष करके परम आनंद की प्राप्ति लई इस तरह दे पुरशां नू सवेर चाहिदी है, उजाला चाहिदा है। भावें सवेर पौ फुटी है तो मंदिर विच दीपक जला के बैठणगे, बत्ती जला के बैठणगे, रोशनी दे उपाशक, रोशनी दे मुतलाशी, रोशनी दे जो है पुजारी। तो दो ही तरह दा मनुखी दुनिया विच कह लईए संघर्ष है। जो अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद ते परम पद दी प्राप्ति नहीं कर सके, उह समाज नाल संघर्ष करदे ने, कानून नाल संघर्ष करदे ने, जगत नाल संघर्ष करदे ने। और इस संघर्ष दे च जगत नू चोट पहुंचती है, जगत नू हानि पहुंचती है। लेकिन संघर्ष में बिरतियां ते मनुख दे अंदर हैं। जो अपने मन नाल संघर्ष करन नू राजी हो जाए साधु, और जो समाज दे नाल संघर्ष करन नू अपने आप नू समझा लवे मना लवे दुष्ट है। इंज कह लो पृथ्वी ते या ते साधु ने या दुष्ट ने, क्योंकि संघर्ष में ही बिरतियां ते मनुख दे अंदर है कि ने। तो जो समाज नाल संघर्ष करदा है समाज दे नियम तोड़दा है, कानून नू तोड़दा है, मर्यादावां तोड़दा है, और तोड़ के अपना मतलब हल करदा है। दूसरे पासे जो साधु है साधना विच लीन है, मन नाल संघर्ष करदा है, तो मन नाल संघर्ष की है? लोभ नाल संघर्ष, काम नाल संघर्ष, अहंकार नाल संघर्ष। और ये देखण दे चाया है ये संघर्ष मनुख कल्या ही करदा है। इस दे च दूजा तीजा चौथा पंजवां सहायक नहीं आउंदा, बल्कि बाधक ही बनदा है। तनहाई चाहीदी है, एकांत चाहिदा है। रहे एकांत एको मन वसया आसा माए निरासो। जो समाज नाल संघर्ष करदा है इनू दूजे तीजे दी लोड़ आउंदी है। जो कानून नाल संघर्ष करदा है संसार नाल संघर्ष करदा है ये अपना संगठन बना लैंदा है, अपनी जमात बना लैंदा है, ग्रोह बना लैंदा है। पर एक गल सच्चाई है, दुष्टां दे ग्रोह होए ने, संतां दे संगठन नहीं होए, अवतारां दे संगठन नहीं होए, परम पुरखां दे संगठन नहीं होए। कल्ली जिंदगी, तनहा जिंदगी। इस वास्ते मैं अक्सर कहिंदा हुंदा कोई देश पूर्ण तौर ते राजनीतिक हो सकदा है, पर कोई देश पूर्ण तौर ते धार्मिक नहीं हो सकदा। कोई देश पूर्ण तौर ते धनवान हो सकदा है, पर कोई देश मुकम्मल तौर ते धार्मिक नहीं हो सकदा। और कोई देश मुकम्मल तौर ते समाजिक हो सकदा है, कोई देश पूर्ण तौर ते व्यापक तौर ते धार्मिक नहीं हो सकदा। देश दी ते गल छड्डो, कोई पूरे दा पूरा प्रांत भी धार्मिक नहीं हो सकदा, कोई पूरी दी पूरी कौम भी धार्मिक नहीं हो सकदी। ते कौम दी गल बहुत वड्डी है, कोई पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक नहीं आउंदा। ऐसा देखण दे चाया है। बड़े बड़े अवतारी पुरशां दे घर दे च परिवार दे च भी बहुत वड्डे अधार्मिक पुरश पैदा होए। कंस अधार्मिक है, पर वकत दे अवतारी पुरश द्वापर युग दे अवतारी पुरश श्री कृष्ण दे ओ मामा ने। लेकिन समय दा अधार्मिक पुरश प्रहलाद दे पिता ने हरनाकश अधार्मिक पुरश, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वड्डे भराता ने बाबा पृथ्वी चंद गुरमत तो बिल्कुल उल्ट। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੀਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਨਵਾਨ ਨੇ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਨੇ। ਤੋ ਕੋਈ ਉਮਤ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਿਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਪਤਨੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ, ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਕੌਮ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਨਹਾ ਕੱਲੇ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਤਰ ਨਾ ਬਨ ਬਨ ਸਾਧਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਾਂ। ਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਗਾਉਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੰਤ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਤੋਂ ਜੋ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਰਾਤ ਖੌਫਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਚ ਡਾਕੂ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਚੋਰ ਉਸ ਤਾਰੀਖੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਾਤ ਡਰਾਉਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਤ ਦੀ ਤਨਹਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕੋਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਬਾਹ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ, ਮਦਦਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਖਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਈ, भावें प्रभु चिंतन नाल ए सब कुछ होया पर मदद अमृत वेले दी ब्रह्म मुहूर्त दी अलल सुभा दी। किन्ने खुशकिस्मत लोग ने हो जो इस समय तो लाभ उठा के अपने मन नाल संघर्ष करन नू जुट पैंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हां संसारिक कामना मन विच रखण वाले किसे वक्त भी इबादत कर सकदे ने, उन्हां दा अपने मन नाल संघर्ष नहीं आउंदा बल्कि प्रभु दे कोलों कोई मंग आउंदी है, कोई चाहत आउंदी है। वो चाहत अपनी शक्ति नाल अपने परिवारिक बल नाल उस वस्तु नूं पा नहीं सकदे, तो प्रार्थना दे अगों परमात्मा दे अगों प्रार्थना है। कहिंदे ने जद भी मनुख असफल हो जाए और सफलता उसनूं बहुत कोसों दूर दिखाई देवे और अपना बल कम करदा या ना दिखाई देवे, तो फिर वो ईश्वर दे अगों हथ जोड़दा है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर। पर अमृत वेले जो उठ के नाम जप रहा है वह परमात्मा नूं इंज नहीं कहिंदा मेरी ए इच्छा पूरी कर, मेरी ए इच्छा पूरी कर, वह इंज कहिंदा हे प्रभु जो तेरी इच्छा होवे उस विच मैं राजी होवां, जो तेरी रजा होवे उस विच मैं राजी होवां। बस यही फर्क है एक सच्चे इबादत गुजार मनुख दे और एक दुनियादार मनुख दे च, ये फर्क है। एक कह रहे हे प्रभु मैं सजदा कर रहा, मैं जोदड़ी कर रहा, मैं तेरी इबादत कर रहा, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर। करीबन करीबन असी देखते हां एक पिता भी सियाणा है, किस दो तीन साल दे बच्चे दी लोड़ की है, एक साल दे बच्चे दी लोड़ की है। अगर मां नूं पता ही नहीं, प्यो नूं पता ही नहीं, तो शायद मां बाप एवें बन गए ने ये मां बाप है नहीं। इस दो तीन साल दे मासूम बच्चे दी वास्तविक लोड़ां की ने मां समझदी है, प्यो समझदा है, और इस बच्चे नूं मंगनी करनी पैंदी क्योंकि अजे विचारा मंगण जोगा भी नहीं, मां पूरी करदी है उसकी मंगा नूं। पिता पूरा कर रहा है उसकी जो है लोड़ां नूं। जगत पिता परमात्मा नूं क्या वाकई नहीं पता कि साडी लोड़ां की ने, साडी चाहत की है, और समय दे मुताबक उम्र दे मुताबक जीवन दे मुताबक साडियां लोड़ां की हो सकदियां ने। अगर ये सब कुछ परमात्मा नूं पता ही नहीं तो जैसे वह पिता पिता नहीं कहला सकता जो दो तीन साल दे बच्चे दियां लोड़ां नूं नहीं समझदा, वो परमात्मा भी कैसा परमात्मा होवेगा। और क्यों कर उसनूं परमात्मा आख्या जाए जिसनूं जीवां दी लोड़ां दा ही ना पता होवे। दरअसल सब दियां लोड़ां दा उसनूं पता है, सब दा उसनूं पता है, और सब दी झोली च लोड़ां दे मुताबक उसदी लोड़ां दे मुताबक वह वस्तुआं पांदा है। और ये गुरु नानक दी सोचनी बड़ी अजीम, वाकई किसे दी झोली च दुख भी पांदा है, ये दुख उसकी लोड़ आउंदी, उस तो बिना वह संभलेगा नहीं, उस तो बिना शायद वह सुचेत ना हो सके, उस तो बिना शायद उसके कदम सही मार्ग ते जो है ना हो सकन। इस वास्ते आत्म चिंतन करने वाले पुरुषों की बहुत पुराने समय तो यह सूझ समझ बनी कि हे परिपूर्ण परमात्मा जो तेरी इच्छा है वह पूरी होवे। मन नाल संघर्ष करदे आया पहली अवस्था उन्हां दी ए बनदी है, अगर वाकई उन्हां नूं जित प्राप्त हो रही है तो मैं फिर अर्ज करा मन नाल संघर्ष की है लोभ नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है काम नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है हंकार नाल संघर्ष। पत्थर नाल सिर मार के उहदे सुराख कर देना रस्ता बना देना आसान है, अहंकार नाल सिर टकरा के ते अहंकार नूं चिकना चूर करना कठिन है, औखा है। अहंकार नूं चूर करके जिन्हां ने निरंकार दा मार्ग बनाया, लोभ नूं मिट्टी दे च मिला के जिन्हां ने संतोख दा दीवा जलाया, काम नूं शांत करके जिन्हां ने अपने अंदर राम नूं प्रगट कीता, ये बहुत वड्डे महाबली लोग ने। जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे, कौन है ऐसा व्यापक महाबली जो इन्हां पंजां नाल संघर्ष करके जित नूं जो है प्राप्त होया होवे। तो जद कोई काम नूं जित लैंदा है ਰਾਮ ਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਜੋ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤਿ ਜੋ ਹੈ ਉੱਤਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਖੱਡ ਦੀ ਤਰਫ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੇਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਤਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲੇ ਕੀਜੇ ਅਰਦਾਸ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉਂ ਰਾਖੇ ਘਰ ਬਾਰ ਮਨਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਪੰਜ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਸਫਲ ਸਮਝ ਲਓ ਅਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਪ੍ਰਯਾਸ, ਅਰਦਾਸ, ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੀ ਹੈ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਪ ਹੈ, ਤਪ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਭਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੈਰੂਨੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ, ਉੱਦਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਠ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣਾਵੇ।
1: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤੀ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। परिपूर्ण परमात्मा अनंत शक्तियां का मालिक है, अनंत कला धारनी है और अनंत गुण उस तो प्रगट होते हैं। जेड़ा जेड़ा गुण, जेड़ी जेड़ी कला और जेड़ी जेड़ी शक्ति की झलक भगतां दी दृष्टि विच पई, भगतां ने उसी ढंग दे उस कला उस शक्ति दे गीत गाए ने। वेदांत आचार्य व्यास दा ते कहना है कि जैसी मनुख दी दृष्टि हुंदी है वैसी ही सृष्टि हो जांदी है। संसार दरअसल एक रूप नहीं, जैसी जैसी मनुख दियां नजरां ने वैसे वैसे संसार दे नजारे ने। जैसी जैसी बंदे दी दृष्टि है वैसी वैसी सृष्टि दा रूप हो जांदा है। एक खिड़िया होया गुलाब दा फुल, उसनूं एक बिल्ली वेख रही है, उहदे वेखण दा अपना ढंग है। पर उसे खिड़े हुए गुलाब दे फुल नूं जद एक कुत्ता वेखदा है तां उहदी दृष्टि अपनी है। जो रूप बिल्ली नूं दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि उही रूप कुत्ते नूं दिखाई दे रहे। उस खिड़े हुए गुलाब दे फुल नूं जब एक बकरी वेखदी है तो कई दफा मुंह विच पाण दी कोशिश करदी है, उहनूं एक घास ही दिखाई देंदा है और कुछ नहीं। उस फुल नूं एक सप वेखदा है, एक आम साधारण मनुख वेखदा है, वह किसी होर ढंग नाल वेखदा है। पर उस फुल नूं जब एक कवि वेखदा है, शायर वेखदा है, वह फुल दी सुंदरता कोमलता दे बहुत गहरे तल विच खो जांदा है और कवि दे अंदरों अगम्य गीत फुट पैंदा है। फुल तो वही है पर वेखण वेखण दी दृष्टि वख होण करके फुल दा रूप भी वख हो जांदा है। तो जितनियां दृष्टियां ने उतनियां ही सृष्टियां ने, जितनियां नजरां ने उतने ही नजारे ने। जे सृष्टि दे अनेकां रूप हो सकदे ने तो तकनी वख वख होण दे नाते परमात्मा दे भी वख वख रूप भगतां दे सामने आए ते भगतां ने परमात्मा दे वख वख रूपां दी चर्चा कीती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कि एक कथनियां इतनियां ने वख वख रूपां दे जिन्हां नूं पूर्ण रूप दे बयान भी नहीं कीता जा सकदा। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। करोड़ां तरां दे कथाकारां ने करोड़ां तरह दियां कथनियां करोड़ां वार कीतियां, लेकिन हे ईश्वर तेरी कथा अजे मुक्की नहीं, खत्म नहीं होई। कथा करन वाला ते खत्म हो जांदा है लेकिन तेरी गल मुकदी नहीं, तेरी कथा मुकदी नहीं, क्योंकि तू अनंत गुणा अनंत कला ते अनंत शक्तियां दा मालिक है। परिपूर्ण परमात्मा दी जिहड़ी जिहड़ी शक्ति जिड़ी जिड़ी कला और जिड़ा जिड़ा गुण सामने आया है, भक्ता ने उसका बड़े सुंदर ढंग नाल वर्णन किया है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी जपजी साहब की उच्चारण की स्तोरी विच उन्हां कुछ एक दृष्टियां का जिक्र किया है। गावे को तान वह किसे तान, जे किसे कुल समझण दा तान है, कथन करन दा तान है, तां ओ कह रहे है हे परमात्मा तू एक तान है, तू एक शक्ति है। पर शक्ति कितनी है, केता तान सवाले रूप। साहब कहिंदे ने शक्ति कितनी है अंदाजे तो परे, किसदे कोल ए कुवत है, किसदे कोल ए शक्ति है कि उस शक्ति नूं नाप सके तोल सके गिण सके। क्योंकि बंदे कोल पैमाने तीन ने, कुछ वस्तुआं ऐसियां ने जिन्हां नूं बंदा तोल के अंदाजा ला लैंदा है इतनी है, कुछ ऐसा है जिस नूं गिणना पैंदा है ते कुछ ऐसा है जिस नूं नापना पैंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान हे परमात्मा तू नापिया नहीं जा सकदा, क्योंकि पता ही नहीं चलदा कि तू कित्थों शुरू हुंदा है कित्थे खत्म हुंदा है। कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा, जो तेरा चीरा जो तेरा चोला है ਇਹ ਨਾਪ ਤੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਕ ਤੂੰ ਹੈ ਤੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੁਲ ਕਿਉਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਗਿਣਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤੋਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਪ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਨਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੋਈ ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੋਧਕ ਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਦਮ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਮੌਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿਚ। ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਤ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਸੀ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਣ। ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਨ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਬੋਧਕ ਬਲ, ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਸਭ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣੋ। ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵੇਖੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪਾਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਹਿਰਦਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਾਂ, ਤੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਨ ਤੇਰੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟ ਕਰਾਂ, ਤੋ ਮਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਧਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬਣੇ तन ते मन ही ना होवे तो धन कित्थों कमाया जा सकता है। तो धन भी मैं तेरे कदमा दे की रखा, तन ते मन भी मैं तेरे कदमा दे की रखा, इते सब कुछ तेरा दिता होया। दरअसल प्रभु वसीला ना बने तो संसार दे ते कुछ भी मनुख नूं नहीं प्राप्त हो सकता, ना तन ना मन ना धन। वसीला ही परमात्मा है, वसायल ही ईश्वर है। एक उर्दू दे शायर दा कहना है, दुनिया में कुछ ऐसे भी कमल होते हैं, खिलते नहीं पर वक्त उजल होते हैं, ये बात जुदा है कि वो तामीर ना हो, हर सहन में कुछ ताजे महल होते हैं। शाहजहां नूं मौका मिल गया, वसायल मिल गए, उन्हें जमीन देते ताज महल खड़ा कर दिता, पर जिसनूं कोई मौके ते वसायल नहीं लभदे ओदियां हसरतां अंदर ही रह जांदियां। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो ताजे महल तामीर नहीं कर सकता, वो भी तामीर कर सकता है, हर मनुख तामीर कर सकता है अगर उसनूं मौका ते उसनूं वसायल मिल जान। तो मौका ते वसीले ते परमात्मा आप ही है। इस वास्ते हिरदा राम कहिंदे ने, इह तन ते मन ते धन तेरे वसीलिया नाल मिलिया, तू दिता है मैनूं, इह मैं तेरे कदमां विच की रखा, क्योंकि मैं चाहना कोई अपनी चीज तेरे कदमां विच रखा। तो तन मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, मन मेरा नहीं। हिरदा राम कहिंदे ने, हां कुछ मेरा भी है, वो मैं तेरे कदमां विच अर्पण करना चाहना। तो उन्हां दा फरमान है, जो कुछ मेरा है ओने मेरे गुनाह मेरियां भुलां मेरियां कमजोरियां हे परमात्मा जी तू कबूल करना चाहे मैं तेरे कदमां विच रख दें, मैं तेरे अगों अर्पण कर दें। गुरु नानक देव जी महाराज की बड़ी एक सुंदर पंक्ति है, दात जोत सब सूरत तेरी, ए शकल सूरत हे परमात्मा तेरी है, चल रही प्राणा दी हरकत ए तेरी है, इहदे च आत्म प्रकाश तेरा है, पर हे ईश्वर कुछ मेरा भी है। तन मन स्वास ते आत्मा जे परमात्मा दे ही ने तां फिर मनुख दा अपना की रहा। साहिब कहिंदे ने कुछ मेरा भी है, दात जोत सब सूरत तेरी, ए शकल सूरत तेरी बनाई। असी शकल सूरत दे च अपना कोई चुनाव नहीं कीता, परमात्मा दी देन है। प्राणा दी हरकत तेरी है, आत्म प्रकाश तेरा है, दात जोत सब सूरत तेरी, पर इस दे च कुछ मेरा भी है। की है? बहुत सियाणप होमे मेरी, अहंकार ते चतराई ए मेरी है, और इस मेरी चतराई ते होमे दे आसरे ते मैं तेरी चीज दिते भी मेरे दी मोर ला छड़दा। तन तेरा दिता होया मैं कहना मेरा तन है, धन तेरा दिता होया मैं कह देना मेरा धन है, मन तेरा दिता होया मैं कह देना मेरा मन है, दिती हुई ये तेरी आत्मा मैं कह देना ये मेरी आत्मा है तेरा, लेकिन मैं मेरे दी मोर ला बैठा, मैं अपना दावा जता बैठा, और तेरी चीज दे उते जिस दिन दा मैं अपना दावा कीता है तैथों दूर हो गया, वित बहुत वध गई है, नेड़े आउण वास्ते इस मैं मेरे दी मोर नूं हटाना पएगा। तो विष्णु जी दा कहना सी, सब कुछ दात दे च मिले है, दान दे च मिले है, तन है मन है धन है, दात नाल नफरत नहीं, बड़ा दाता तिल ना तमाए, परमात्मा दा सुभाव है दान देना, वो सब कुछ नूं दे रहा है, वो सूरज चंद तारियां नूं रोशनी दे रहा है, वो जमीन नूं तरह तरह दियां धातुआं ते होर अणगिणत भंडारे दे रहा है, उसने मनुखी तन दे अंदर श्वासां दी हरकत पाई, ज्ञान इंद्रे दिते कर्म इंद्रे दिते, ये सब कुछ उसकी देन है, उसका सुभाव है देना, जो कुछ उसने दिता है उसकी देन नूं वेख के उस देन नूं निशानी जान के दाते दा चिंतन करना है, ये विष्णु दा नजरिया सी। अगां चल के ख्याल ये प्रचलित हो गया कि विष्णु भंडारी है, संसार नूं रिजक देन वाला है, संसार नूं दाता देन वाला है। दरअसल दाता देने वाला नहीं, दाते दा ज्ञान कराने वाला है, और बोध कराने वाला है कि दाता ओ है, कि जो कुछ साडे कोल है ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬੜੀ ਵਿਖੜੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਪੇਚੀਦਾ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ, ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੌੜਾਈ। ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਮੂਲ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਨੇ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਬੋਧ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਆਯੁਰਵੇਦਕ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਰਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਖੋਜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੁਟਮ ਸਾਥ ਵਰਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਲਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਯਾ, ਆਗੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਾ ਕਨਸ ਛੇਦ ਕਿਆ ਵਡਾ ਭਇਆ। ਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਟੋਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਦ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤ੍ਰੇਈ ਗੁਣੀ ਵੇਦ ਵਿਸ਼ਾ ਨਸਤ੍ਰੇਈ ਗੁਣੀ ਭਵਾਰਜਨ। ਹੇ ਅਰਜਨ, ਵੇਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਸਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਖੋਜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 9 ਨੇ, ਰੰਗ 9 ਨੇ, ਸੁਰਾਂ 7 ਨੇ,
2: زبان دے رس چھے نے اس طریقے دی کھوج بھی

देव जी उस तवी दे ऊपर चौंकड़ा मार के बैठ गए ने ते आया पठियारा रेत एक पासे तपदी पई है। अज ना ता तवी ने सुभा बदलिया है ये भी लाल सुरख है, ना अज अग ने सुभा बदलिया है ते जेड़ी शीश विच रेत पान लगे ने ये भी ओही तपदी पई है जेड़ी दाने भुनण वाली है। ओहो जी रेत शीश विच पाईए ते किन्ने उस वक्त साई मियां मीर आया आखिर मेरे गुरु दा चरणा दा सेवक सी। कई विद्वाना ने इस घटना नू रोचक बनाने लई बचन भी कीते ने, मैं रात भी सनखोजे अर्ज कीती साई मियां मीर गुरु का सिख सी, ए आप गुरु की बाणी पढ़दा सी, एदी संगत करके ता बीबी कौला नू बाणी दा रंग लगा सी। कहिंदे ने साई मियां मीर ने हरिमंदर साहिब दी नींह रखी ते जिदन नींह रखी सी ना ते गुरु अर्जन देव नू क्या सी दात्या के अज तुसी नी रखो खां। साहब ने कहा साईं जी हरिमंदर दी नी तू रख, एक दिन समा आउणा नी मैं भी रखांगा। ते साईं ने सुभावक पुछ लिया सी गुरु अर्जन देव जी जिदन तुसी नी रखोगे मैं कोल होवांगा। ते साहब ने एक बचन कहा कहन लगे साईं जी अज तुसी नी रख दियो देखो खां मेरा सिख बाबा बुढ़ा खुश है भाई गुरदास खुश है अज साडे रबाबी कीर्तन पै करदे ने तुहाडे नी रखण तो पहला रबाब वजदी है मृदंग वजदे ने जोड़िया वजदियां पईयां ने ते रबाबां वजदियां पईयां ने चार चफेरे गुरु का लंगर चलदा पिया है ते कड़ा प्रसाद दी देग तैयार है तुसी नी रख दियो मैं खुश हां मेरे सिख खुश ने ते मेरे घर अंदर साज वजा के कीर्तन कीता जांदा है ते गुरु का लंगर चलदा है एक बचन मेनू कर दे तू नी रखी मैं प्रसन्न मेरा परिवार खुश ते जिदन मैं नी रखांगा खोवेगा तू भी मेरे कोल पर मेरे नाल बचन कर तेरिया अखां विच पानी नहीं तू भी उस वक्त नी रखदिया देख के प्रसन्न होवेगा। नी मैं भी रखनी है कुछ विद्वाना ने बचन बड़े प्यारे कहे। मैं अर्ज करा के कई घटनावां ऐसियां हुंदियां ने हर एक विद्वान दे अंदर दी उडारी भी हुंदी है कोशिश हो करदा है कि इस ढंग नाल घटना नूं बयान करे लिखे कि सुन वाले दे अंदर कुछ धीरज ते टिका आवे। पहली घटना साईं मियां मीर ने एक होर गल कही सी जिदन हजूर दी बाणी पढ़दा पिया सी ना ते सामने गुरु की बाणी दी तुक आ गई के तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई ते साई ने गुरुदेव दे चरणा विच अर्ज कीती सी के दाता जी बाणी मैं तेरी पढ़ना वा पर सिख दे मन विच जे शंका पैदा होवे ते गुरु शंके नू निवृत करदा है। आ जेड़ी बाणी दी तुक पढ़ी है के तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई कि सतगुरु ए एक उडारी है अंदर ख्यालां दी जां सतगुरु एदे पिछे असलियत भी है कि कोई अपने तन मन नू कटन लई तैयार हो सकता है कि तपदी कोई अग दे विच अपने तन नू कोई साड़ सकता है। ते गुरुदेव ने एक गल कही सी साईं जी बाणी विच फोकियां उडारियां नहीं जो कुछ गुरु की बाणी विच कहे ओ गुरु भी करके दिखाएगा ते सिख भी करके दिखाणगे। ते मैं अर्ज करना हुन्ना बाणी दे अर्थ ते सिख दा जीवन करदा है गल्ला नहीं। कदी देखो खां बाणी विच इक बचन आउंदा है वी शोहे जंबूर खवै ना वंजन गाखड़े खे दात्या जदो तेरे तो विछड़ जावां ते विछोड़ा आंजे जिवें जंबूरां नाल मेरे मास नूं कोई नोचदा है पर तू चेते होवें ते जंबूरां नाल भी कोई नोचे मैनूं जंबूरां दी पीड़ नहीं। ते जे कोई पुछे इहदे अर्थ किसे ने कीते ने हां कीते ने बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कीते ने जे जंबूरां नाल नोचिया पर जुड़िया गुरु की बाणी नाल जदो पढ़ने करवत भला ना करवत तेरी ला गले सुन बेनती मेरी कि आरा सामना होवे ते गुरु दे सामने आरा चले ते मनुख नू पीड़ नहीं लगदी एदे अर्थ कीते ने भाई साहब भाई मती सिंह मती दास ने पढ़ने के साहब जी बाणी अंदर जौतन चीरा अंग ना मोरू पिंड परै तो प्रीत ना तोरू जे मेरे कुछ टुकड़े टुकड़े कर दे मैं अंगा नू पिछे नहीं खिचांगा कि एदे अर्थ किसे ने कीते ने हां कीते ने भाई साहब भाई मनी सिंह ने ते लाहौर दी धरती ते कीते।
मेरे गुरु की बाणी विच केवल उडारियां नहीं असलियत है। कह लगे साईं जी ए ताते के तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। कह लगा दात्या किवें हो सकदा है। खजूर ने क्या समा आएगा साई मैं इस पंक्ति दे अर्थ भी करके दसांगा। कई बारी ऐसियां पंक्तियां हुंदियां ने जिन्हां दे अर्थ उस वेले नहीं। अज गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठे ने ते प्रिंसीपल गंगा सिंह लिखदे ने उस वक्त साई मियां मीर आया है जिदियां भुब्बां निकल गईयां ते गुरु अर्जन देव मुस्कुरा के एक गल कही साई जी अपने बचन नूं चेते कर तू हरमंदर दी नीं रखी मैं शहीदां दे मंदर दी पहली नीं रखी जिदन तू नीं रखी मैं प्रसन्न सां ते अज मैं नीं रखी ते तेरे चेहरे ते उदासी क्यों। कहन लगे दूजी गल मैं अज उस पंक्ति दे अर्थ पिया करनू कि तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। कहन लगा सतगुरु अज मेरे तो देखिया नहीं जांदा सतगुरु दे नेत्र जेड़े ने इन्हां दे उपर फलूवे हो चुके सन। सारियां जेड़े ए पवित्र चरण ने ए अग ने बिल्कुल चमड़ी नूं साड़ दिता है। कहन लगे हड्डियां नजर पईयां आउंदियां ने जिवें चौंकड़ा मारिया है जेड़ा तन उस लोह दे नाल लगा है ओदा मास लोह ने खिच लिया है ते जिथे जिथे गर्म रेत पई पैंदी है सतगुरु दे तन विचों फलूवे पै निकलदे ने। साईं कहिंदा दातिया मेरे तो झलिया नहीं जांदा जे तू कहे ता मैं इस लाहौर ते दिल्ली नूं तबाह कर सकना। ते सिख विद्वान लिखदा है खजूर ने अगो बड़े प्यारे बचन कहे कहन लगे साई जी मेरे तन दे फलूवे ना तको तुसी तपदी रेत नूं ना तको तू पुछना एनी गर्मी विच। हजूर कहन लगे अग भी तपदी पई है लोह भी तपदी पई है सूरज भी तपदा पिया है रेत भी तपदी पई है जहांगीर भी तपदा पिया है। जहांगीर शहीदी का हुक्म दे के कश्मीर नूं चला गया बैठा ठंडे इलाके विच पर तपदा ओही पियाई। देख का अग तपदी है रेत तपदी है लोह तपदी है ए सूरज तपदा मुर्तजा खां तपदा चंदू तपदा जहांगीर तपदा पिया है। इन्ने तपदे हुए मैनू तपाना चाहते ने पर इन्ने तपदे होयां दे विच बैठा भी गुरु अर्जन देव ओदे अंदर नूं कोई तपा नहीं सकिया। तन तपदा पर अंदर ठंडे साहब ने उथे जिहड़े बचन कहे उस अदीब ने अपनियां पंक्तियां कहियां ओ कहिंदा चार तरफों अग बरसे सेक सी तन साड़दा छाले छाले हो गया जुस्सा सच्ची सरकार दा साईं मियां मीर डिठा खाल आ जद यार दा ओ हो व्याकुल रोक पिया चीक ते ढाही मारदा सुन सतगुरु क्या मियां छोड़ो प्रीति चाम से क्या हुआ तन जल रहा हम शांत हैं हर नाम से। मेरे अंदर ता ठंड है अंदर दी ठंड नूं कोई खो सकदा है। उथे गुरुदेव नूं जदों तत्ती तवी ते बिठाया खजूर ने एक गल कही कहन लगे साईं मियां मीर इन्हां दे कन्नां विच एक आवाज पहुंचा दई अज इन्हां दियां उच्ची हवेली दियां दीवारां ने मेरे तन नूं रोकण दी कोशिश कीती है मेरी आवाज नूं दबाण दी कोशिश कीती है पर मेरे तत्ती तवी बैण तो बाद जेड़ी खलकत ने नवी करवट लैनी है ओदे सामने जहांगीर दी सल्तनत ने टिक नहीं सकना। मेरे नाल मेरी आवाज नूं तां इह देग विच उबाल के बंद करना चाहते ने पर मेरे तो बाद जदों हर गोबिंद ने कृपान पकड़ी ते इस सल्तनत ने मेरे पुत्र दी कृपान अगे खलो नहीं सकना। इहदा मतलब साहब दे अंदर दी इह भावना नूं उस अदीब ने प्रगट कीता है। साहब ने कहा मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है ए ठीक है मेरी जीव दी आवाज तुरंत बंद कर देगा मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा फसीले आतशो आहन बहुत बुलंद सही भावे अग दियां लपटां उच्चियां ने मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों मेरे हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। किसे कोल ताकत है ओदी तलवार सामने खलो जाए। गुरु अर्जन देव नू तत्ती तवी ते बिठाण तो बाद कह लगे हवेली विच लैके गए ने भाई गुरदास ने अपनी पौड़ी अंदर एक शरदा दी
फुल भेट किए ने गुरु अर्जन देव नू भावे उन्हां ने रमज भरे वचन कहे ने कहिंदे ने साध संगत आओ उस गुरु अर्जन देव तो कुर्बान जाइए जिस परोपकारी गुरु ने तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा सतगुरु दिता जिस परोपकारी ने तुहानू हरिमंदर साहिब वर्गा केंद्रीय स्थान दिता जिस परोपकारी ने तुहाडी झोली दे अंदर कीर्तन दी दात पा दिती। भाई गुरदास कहिंदा है मेरे गुरु अर्जन देव जी अज मैं तकना वा जदों तेरे जीवन नू तेरी प्रीतता निब गई। हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है ना कह लगे सेवक की ओड़क निभगी प्रीत जीवत साहिब सेवियो अपना चलता है राख्यो चीत जिउंदे भी चेते कीता तुरदियां भी प्रीत निभ गई। ते वाकी मेरे साहिब जी जेड़े तुसी बचन कहे रते सही जे मुख ना मुड़न जिनी संयाता साई झड़कड़ पमदे कच्चे बिरगी जिन्ना तार ना आई जेड़े बचन तुसी कह अगां कु तरांग पिछा फेर ना मोड़ा नानक सिज अवेहा वार बौड़ ना होवी जन बड़ा। जेड़े तुसी बाणी विचे बचन कह के गए के पहला मरन कबूल जीवन की छड आस हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। जेड़े बचन साहब जी तुसी कहे ने उन्हां नू कर दिखाया। भाई गुरदास ने बड़े प्यारे बचन कहे कहिंदा गुरु अर्जन देव दी प्रीत इस तरह निभ गई जिवें मच्छी पानी विचों पकड़ भी लई जाए ते ओनू अग ते रख के कोई भुन भी दे पर कहन लगे अग नाल सड़ी कोई मच्छी भी पानी दी इंतजार ते पानी नू आवाज़ां पई देंदी है। मेरे दातिया तेरी ओड़क प्रीत इस तरह निभ गई जिवें मच्छी दी पानी नाल निभ गई है। दूजा प्रमाण दिता तैनू शब्द भुलिया नहीं जिवें कंडे खेड़े दी आवाज है ते मिर्ग उस आवाज दे सामने जांदा है भावे मिर्ग नू तीर नाल शिकारी विन देंदा है ओ मौत नू कबूल करदा है पर शब्द नू कदी छड़। तू अपने सिद्धांत नू छड़िया नहीं तू एदे तीर नू बर्दाश्त कीता। ओ नतीजा प्रमाण दिता दीवा बलदा है पतंगा किन्नी दूर तो हुंदा है अपने आप नू अग विच लीन कर देंदा है। गुरु अर्जन देव जी तुसी पतंगे दी तरह अपने आप नू कुर्बान कर दिता। चौथा प्रमाण दिता कहन लगे दातिया के अज तकने पए हां जेड़ी अंतली रात सी अखीरली बड़ी कष्टदायक सी। भाई वीर सिंह लिखदा है आखदा कलम हिर दिल कंबदा पिया है कलम थिड़कदी पई है कहिंदा सच पुछो मैं इना कुछ लिख चलिया वा पर गुरु अर्जन देव जी तेरे तसीए मेरी कलम जदो लिखन लगदी है ते थिड़क थिड़क के जमीन ते डिगदी। ओ कहिंदे ने जेड़ी अंतली रात सी इन्नी कष्ट भरी है गुरु अर्जन देव महाराज उस प्यारे दे शुक्र भी जुड़े ने कहिंदे ने सतगुरु तू इस तरह रात बतीत कीती जिवें भवरा कमल दे फुल विच बन्या पिया है सारी रात ओ संपट डब्बे विच बजदा है। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी तुसी भवरे दी तरह प्रीतम दी याद विच टिके रहे जेड़े अखीर दे बचन कहे सतगुरु मच्छी दी तरह हिरन दी तरह पतंगे दी तरह भवरे दी तरह अखीर दी गल कही बबीया जदो पुकारदा है जिन्नी देर तक ओदी आवाज निकलदी है ओ पिया पिया दी रत लाई जांदा है। मेरे गुरु अर्जन देव जी तुसी अंतले समय तक जेड़े सिख तेरे नेड़े सन तू उन्हां नू पपीया बन के शब्द दा उपदेश देंदा रहे। भाई साहिब भाई गुरदास ने श्रद्धा पेट करदिया ए बचन कह रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन खेत निर्बाणी कुलीन दर से कुल मच्छी दी कुल दी तरह तेरा प्यार निभ गया। रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन खेत निर्बाणी दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति अंदर ज्योत समाणी शब्द सुरत लिव मिर्ग ज्यों भीड़ पई चित अवर न आनी। ते फिर नाल ओ कहिंदे ने चरण कमल मिल भवर ज्यों सुख संपत विच रहन विहानी गुर उपदेश ना विसरै बाबीए जो आख वखाणी गुरमुख सुख पल प्रम रस सहज समाध साध संग जानी। ते भाई साहब कहिंदे ने गुर अर्जन विटो कुर्बान मैं गुरु अर्जन देव तो कुर्बान जाना वा संखेप विच अर्ज करा सतगुरु दूसरे दिन जदो ए तत्ती तवी ते बैठे ने रावी दे किनारे लियांदा गया। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदा है विद्वान सिख लिखदे ने
सतगुरु ने भाई प्राण इनकी टेक लई, रावी के किनारे ते आए ने, ते साहब दे चरण धोते ने भाई पुराने ने। गुरुदेव दे जदों शरीर नूं तकदा है ते पता नहीं भाई पुराना पंजा सिखां दियां अखां नीर नाल भिज्जियां पईयां ने, ते जदों कुछ बोलन लगदे ने ते मेरा गुरु अर्जन देव कहिंदा जे बोलना है ते मेरे नाल बोलो, कि आपे हर इक रंग है आपे बहुरंगी, ज्योतिष भावै नानका साई गल चंगी। उलामा ना दियो इको गल कहो कि ज्योतुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जे बोलना चाहते हो ते बोलो, तेरा किया मीठा लागे खर नाम पदार्थ नानक मांगे। सतगुरु ने इथे फिर जपजी साहब का पाठ किया। सिख विद्वाना दे मुताबिक जपजी साहब का पाठ करन तो बाद हजूर उस प्यारे दे चरणा विच लीन हो गए। सूरज किरण मिले जल का जल कुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण सिया राम। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां दी शहादत ने एक नवा रंग लैके आंदा। ते जदों भट्टां नूं पुछिए कि अज गुरु अर्जन देव दा शहीदी देने, तुसी तां गुरु दे कोल रहे हो, दसो खां गुरु की उपमा। पहली गल सत्ते बलवंड ने कही, कहन लगे साडी जिंदगी दा तजर्बा ही, असी एक वारी गुरु अर्जन देव तो विछड़ गए सां, सारी जिंदगी ठोकरा खांदे रहे, जिन्नी देर तक गुरु अर्जन देव ने अपने बना नहीं लिया। सूरज चढ़दे तो लैके लैंदे तक सारी धरती नूं घोख ली। गुरु अर्जन वर्गा कोई पातशाह नहीं हो, गुरु अर्जन देव दे दर नूं छड़ के जाई ना। क्या सी उगवणो तैं आत्मणो, चौ चक्की कीन लोवा, जिनी गुरु ना सोवेओ मन मुखा पया मोवा, दुनी चौनी करा मात सच्चे का सच्चा ढोवा। सच्चे वाहगुरु दा तो पई गुरु अर्जन देव ते नूं। जदों भट्टां नूं पुछया कि गुरु अर्जन देव नूं किवें याद करिए, उन्हां ने ता अंदर दी पीड़ा प्रगट कर दिती। कह लगे जब लो नी भाग ललार उदय, तब लो भरमते फिरते बहुतायो, कल घोर समुन्द्र में बूढ़त थे, कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो, तत् विचार यह मथुरा। कह लगे मैं तत् ही गल कहना पियावा, तत् विचार यह मथुरा, जगतारन को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। भट्ट ने अगला बचन किया, कह लगे जग और ना यह महा तम में, अवतार उजागर आन कियो, तिनके दु कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। कह लगे अज जे गुरु अर्जन देव दा शहीदी दिन मनान लगा ना, ए पदत ते मत चूकै रे मन, एदे अर्थ ने इस सिद्धांत तो किते थिड़क ना जाई। केड़े तो? कह लगे ए पदत ते मत चूकै रे मन, भेद विभेद ना जान पियो, किते गुरु अर्जन देव ते रब विच अंतर ना समझ लई। ए पदत ते मत चूकै रे मन, भेद विभेद ना जान पियो, पर तच हृदय गुरु अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। आओ प्यारियो, उस गुरु अर्जन देव ने अपने आप नूं कुर्बान करके सिक्खी विच एक नवी रूह फूक दिती। प्यारियो नवा रंग लियांदा। गुरु अर्जन देव कृपा करन सानू भी अपने चरण शरण अपने चरणा विच टिका बख्शन, नाम दी दात बख्श के दाता निवाज दे। इनिया को बेनतियां जी प्रवान करनिया जी। वाहिगुरु जी का खालसा।

0: जो तू दे सो कहां स्वामी, मैं मूर्ख तहन ना जाई। ठीक फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया कई न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक, है है है सब जग भयो जय जय जय सुरलोक। धर्म हेत साका जिन किया शीश दिया पर सिर ना दिया, शीश दिया सिर ना दिया। परम सम्मान योग चवर शत दे मालक तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभाए मान को बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी गणों खताबली दीवान विच हजूर दी चरण शरण विच आप जी ने हाजरी भरी है। इराकी गुरबाणी का कीर्तन आपने सरवण किया है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दे शहादत वाला दिन पिछे बतीत होया है, उस गुरु तेग बहादुर पिता जी दे पावन पवित्र जीवन उन्हां दी शहादत दी विचार आपां नहीं करनी। कोशिश यही करिए कि अरंभता तो लेके संखेप गुरु तेग बहादुर जी दी जीवनी नाल आपां सांझ पाईए। ठीक है कई गुरमुखां नूं जीवनी दे संबंध विच बहुत जानकारी मिली, पर फिर भी कई ऐसे गुरमुख प्यारे संगत विच मिलणगे जिन्हां नूं गुरु तेग बहादुर जी दी जीवनी संबंधी शहादत दा तां जरूर पता है, पर गुरु तेग बहादुर जी होर की बख्शां कीतियां, किवें हर थां ते जुल्म नूं जबर नूं सतगुरु ने सबर दे नाल सह लिया। आओ उस गुरु तेग बहादुर जी दा धरिए ध्यान, जिस गुरु तेग बहादुर जी दा आगमन अमृतसर दी धरती ते होया है, गुरता गद्दी बकाले बाबा बकाले विच प्राप्त हुई है, ते जिस गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत दिल्ली चांदनी चौक नेड़े हुई, आओ उस गुरु तेग बहादुर जी दे चरणां दा ध्यान करो। मैं अर्ज कीती सी गुरु कलगी वाले कहिंदे ने कदी तू प्यार नाल गुरु तेग बहादुर जी नूं एक वारी चेते कर लई, जिथे तू याद करेगा गुरु तेग बहादुर उत्थे सहायक होणगे। गुरु तेग बहादुर जी दा नां लिया तां भलिया घर विच किसे चीज दी कमी नहीं रहिंदी। साहिब दे बचन असीं पढ़ने आ, तेग बहादुर सिमरे घर नौनिद आवै ताए, सब थाई होए सहाय करो कृपालता। प्यार अदब दे नाल गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी चौथे गुरुदेव जिन्हां दे पावन पवित्र अस्थान नूं तक के गुरु अर्जन साहिब जी ने एक बचन कहा सी, हे बापू दिठे सबे थान नहीं तुझ जेहा, बदहो पुरख बिधाते तां तू सोहया, वस दी सगन अपार अनूप रामदास पुर, हर हां नानक तस्मल जाए नाया रामदास सर। उस गुरु रामदास जी नू गुरता गद्दी गुरु अमरदास जी तो प्राप्त हुई है। मैं आरंभ तो इस खानदान दे आरंभ तो तुरना चाहना वा। गुरु रामदास महाराज गुरगद्दी ते विराजमान रहे ने। आप जी दी हजूरी अंदर संतोख सरदा सरोवर एदा भी टप लगा सी। हजूर दी हजूरी विच ही अमृत सरोवर दी सेवा कीती गई। गुरु रामदास जी ने 30 रागां विच बाणी उचारण कीती ते गुरु रामदास जी दे घर विच कहन तो मुराद माता बीबी भानी दी कुख विचों 3 पुत्रां ने जन्म लिया। उन्हां विचों सन सब तो वड्डे बाबा तृतीया जी, उस तो छोटे सन बाबा महादेव जी ते सब तो छोटे सन शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव महाराज। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने चवर छतर धन गुरु अर्जन साहब जी नूं दित्ता है। ता ही ता भट्टां ने बाणी विच बचन कीता है, छतर सिंघासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो। धन गुरु अर्जन साहब महाराज इन्हां ने मेरामत कीती, उस सरोवर दी सेवा नूं अगे वधाया। अगे संतोख सर सी, मेरे गुरु अर्जन साहब ने नाल रामसर सरोवर भी बनाया। रामसर दे किनारे गुरु ग्रंथ साहब जी दी भीड़ लिखी गई। हरमंदर दी उसारी मेरे धन गुरु अर्जन देव जी ने कराई। कोठा साहब दी उसारी भी उन्हां ने कराई। ते याद रखना गुरु रामदास ते गुरु अर्जन साहब दे वेले अमृतसर दी धरती ते एक निवास स्थान बनाया जिन्नू गुरु के महल कहा जाता है। गुरु रामदास जी दे वेले ए बने। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने अपने तो बाद उन्हां दा इको एक सपुत्र है, उन्हां दा नाम है धन गुरु हरगोबिंद साहब जी। गुरु अर्जन साहब तो बाद धन गुरु हरगोबिंद साहब गद्दी ते विराजमान होए ने। ते जदो 2 कृपाना मीरी ते पीरी दियां पाईयां, जदो रबाब दे नाल नगारे भी वजे, जदो अमृत वेले आसा दीवार दे नाल शाम नूं गुरु हरगोबिंद साहब ने ढाडी वारां भी आरंभ कीतियां, ध्यान रखना उस तो बाद धन गुरु हरगोबिंद साहब बारे भाई गुरदास ने एक गल कही। कहन लगे दुनिया दे लोगो, गुरु रामदास सोढ़ी ने गुरु अर्जन साहब नूं गद्दी दित्ती अपने पुत्र नूं। अज गुरु हरगोबिंद साहब गुरगद्दी ते विराजमान ने। ते एक गल याद रखियो, चली पीढ़ी सोढ़ियां रूप दिखावण बारो बारी हुणे वख वख रूप विच आउणगे। ते सिखां ने अरदास कीती, गुरु हरगोबिंद साहब असीं तुहाडे तों एक जानकारी लैणा चाहने आं, तुसीं समर्थ हो। ते इस गल ने साडे एक शंके नूं भी निवृत कर दिता कि दसां पातशाहियां तों अगे गुरु जीव जोत किसे मनुख देही विच नहीं। धन गुरु हरगोबिंद साहब नूं पुछदे ने, पुछन सिख अरदास कर, 6 महलां तक दर्श निहारी, 6 पातशाहियां तक तां दीदार हो गए, हुण अगे किवें किरपा होणी है। ते भाई गुरदास कहिंदे, अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी। ते साहब कहिंदे ने, कलयुग पीढ़ी सोढ़ियां अवचल नीव उसार खिलारी। अखीर विच कहिंदे ने, जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। इथे जुग दा अर्थ 4 जुग नहीं, इथे जुग दा अर्थ 2 बाणी विच वी। ते भाई साहब भाई संतोख सिंह ने शब्द अक्सर वरते है, जुगल पद दोवें हाथ जोड़ के जुगल बंदना दोनों कर जोड़ के जोग जोग सतगुर धरे अवतारी। 6 पातशाहियां तक दर्शन कर लए ने, ते 6 तो बाद 4 पातशाहियां दे होर दर्शन करोगे। भाई गुरदास होरां दी बाणी दी गवाही है। मेरे कहन तो मुराद गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 4 जंगा लड़िया ने, 4 जंगा विच फतेह प्राप्त कीती है। ते गुरु हरगोबिंद साहब जी दे घर अंदर 5 सपुत्र होए ने, ते एक सपुत्री ने जन्म लिया है। ते गुरु हरगोबिंद साहब दे वड्डे सपुत्र ने बाबा गुरदत्ता जी, उस तो छोटे ने बाबा अटल राय जी। मैं संखेप विच ए अर्ज करनी चाहना कि समझ पै जाए कि गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन संबंधी बाबा गुरदत्ता जी, बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी,
1: ਤੇ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਤਮ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਇ ਸੂਰਜਮਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ 1621 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਲਈ ਚੱਲੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਾਤ ਗਈ ਏ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਤ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੱਕਿਆ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਚੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਾਤਾ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਭ ਕੋਈ ਤੱਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ।

औरत वाली खुर्जी चुरा लिए। अमृत वेला होया, माता जी ने आप इश्नान कीता है, नेतनेम कीता, बाणी दा पाठ कीता, ते दोना पोतरिया नू उठाया है। अज मां अपने नेतनेम तो बाद एक एक नू इश्नान कराया है, सोने पोशाके पहनाए ने, सीट ते कलगी सजाइए, ते अपने कोल बिठा के दोना पोतिया तो नेतनेम दी बाणी दा पाठ कराया। आप पाठ सुने इना तो जदो इधर दिन दा चढ़ा होया, माता जी ने बस्तर लभदिया लभदिया थले झाती मारी, ते देखदे ने रुपया वाली पोटली जड़ी ओ गुम, ते आवाज दे के गया पुत्र गंग्या, चंगा कीता ही तू दौलत नू सांभ लिया, हुण ओदा हिरदा सी चोर, सुनदिया सारी ओनू अग लग गई, कहिंदा हद हो गई, नाले ता अपने घर विच मैं तुहानू रखिया है, ते दूसरा मेरे उत्ते इल्जाम लांदे पयो मैं चोर हां। कहन लगा मैं चंगा तुहाडे नाल भला कीता, तुहानू किते गिरफ्तार करा देंदा, तुहानू किते मैं सरहंद दे सूबे कोल पकड़ा देंदा, ते पता लगदा कि अज तुहाने नाल बीतदी की, अपने घर थां दित्ती ते मेरे उपर ही दोष। ते माता गुजरी कहिंदे ने भलिया समा सदा इको जा नहीं रहिंदा, जे तू पकड़ा भी देंदा ते फिर की होना सी, होना ओ कुछ ये जो कुछ मेरे अकाल पुरख वाहगुरु नू मंजूर है, होना ओ कुछ ये जो मेरे प्यारे परमेश्वर नू मंजूर है, पर जे तू किते रखे ने ते चंगा है। कहिंदे ने उस बंदे तो जरिया ना गया, उच्ची सारी रौला पान लग पिया, चोर चोर कह के जदो रौला पाया, मैं संखेप विच अगे तुरा, अपने पिंड तो ए मुरिंदे मुरुंडे दे संदो कोतवाल दरोगे कह लो, एक दा नाम सी जानी खां, एक दा नाम सी मानी खां, दोना नू जार के कहिंदा है के गुरु गोबिंद सिंह दे छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी मेरे घर दे अंदर हुणे हुणे उतरे ने, ते मैं चाहंदा सा हकूमत दे बागी बच के ना रहन, ते मैं तुहानू ओ सू देण आया, चलो मेरे नाल उना दी माता ते उना दे पुत्रा नू गिरफ्तार कर लो। हुण देखो गुरु ते भी ए समा आया, अज माइया बीबिया भैणा नू जेला नहीं, कदी ओ भी समा सी, सब तो पहला मां गुजरी है जिन्हें जेल कटी दे, सब तो पहला माता गुजरी है, ते वाकई मां तू धन्ने, इस करके सी तेनू धन कहने हां। तेरा पति शहीद है, मैं एक दिन अर्ज कीती सी, तेरे चार पोतरे शहीद ने, तेरी ननान दे पंज पुत्र ने, पंजे दे पंजे पुत्र शहीद ने, तेरा सका भरा शहीद है, इथों तक मां तू आप भी तां शहादत दा जाम पीता है। माता गुजरी जिनू पकड़वान वास्ते जानी खां ते मानी खां प्रभात वेले दूसरे दिन पहुंच गए ने। माता गुजरी जिनू कहिंदे ने असीं तुहानू गिरफ्तार करन आए हां, ते माता जी ने पुत्रां दे मत्थे चुम्मे ने पोतियां दे, कहन लगे मां ए सानू क्यों पकड़दे ने, ते मां ने असीस दित्ती, पुत्रो अरदास करियो अपने दादे दे चरणा विच, आपां हुण अपने उस मुकाम ते चलन लगे हां जिथे साडा आखरी टिकाणा होणा, जिथे साडा वसेबा होणा है। जदो मां गुजरी जी निकलन लगे ने, ते गंगू कोल खलोता है, ते तुरन लग्या जानी खां ते मानी खां कोल ने, ते माता गुजरी जी ने एक गल कह दिती सी, गंगू जिस दौलत दी खातर तू बेईमान होया है, चेते रखी इस दौलत ने तैनू सुख दी नींद सौ नहीं देना। हुण जानी खां ते मानी खां दे कन्न विच इक गल पै गई, मैं इधर जरूर आवांगा भी इह किवें मरिया परत के, इन्हां दे कन्न विच इक गल पै गई कि इस गंगू ब्राह्मण दे कोल दौलत है, पर हकूमत जेड़ी ओ हमेशा अपना लाभ लैके परत के बंदे जिसने उन्हां दी मदद कीती होवे ओनू भी पूंजदिया देर नहीं दिलांदी। उन्हां देख लिया दे कोल दौलत है पर चुप कर गए, अनसुनी कर दिती। अज माता खेड़ी तो मुरिंडे आईए, एक रात माता गुजरी जी ते छोटे साहिबजादे मुरिंडे रहे ने, उधर सूबा सरहंद वजीर खां सरहंद पहुंच चुका है, इस करके क्योंकि ओनू गुरु कलगी वाले दा सीस नहीं मिलिया, ओ इन्ना कु दुखी है, कहिंदा इन्ना घेरा पाया, इन्ना नुकसान कराया, पर गुरु गोबिंद सिंह फिर भी ना पकड़े गए, कहिंदे ने दुख है। ते जानी खां मानी खां इतला पै देंदे ने सूबा सरहंद नू के गुरु गोबिंद सिंह जी दी बुढ़ी मां ते ओदे छोटे साहिबजादे असी गिरफ्तार कर लए ने, ते जे कहो ते हजूर दे पेश करिए, ओ खुशामद करन वाले ने। वजीर खां प्रसन्न होया, कहिंदा हे खुदा एक समा तू मेनू दे दिता है,